0: Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hyatt Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Group Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
1: Subah Drive Pe.
2: You're listening to 104.9 FM Funny Share Radio.
3: दोपहर फोन पर
4: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फनी एशिया रेडियो
1: शाम को घर पर
5: यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो
1: योर कस्टमर्स आर एवरीवेयर तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो
3: फन एशिया नेटवर्क के साथ कस्टमर्स तक पहुंचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स व्हाइल ट्रैकिंग कॉल्स बुकिंग्स और विजिट्स अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू सी यू एंड कनेक्ट विद यू
1: टू एडवर्टाइज कॉल 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net
3: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.

भाई म्यूजिक हो या फिर बातें हो, आपको तो पता है, यू गाइज आर वेटिंग फॉर दिस आवर, है ना? दिस इज द एपी आवर. यस, दिस इज एपी द हिपी, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड वी आर बैक इन माई फ्रेंड्स. हाँ जी, हाँ जी, आई होप यू हैड अ वंडरफुल वीकेंड. इट इज जस्ट अनदर मंडे, जस्ट एज द यूजुअल. लेकिन पता है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बाहर कितना अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है. इट फील्स लाइक द अराइवल ऑफ फॉल. और एक ना वो नवरात्र के टाइम पे, आई डोंट नो, इंडिया में ना एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है एक हवा में ही, लाइक यू नो, मीठी मीठी सी. एक तो कुछ वो बंगाली में, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो वहाँ पे बोलते हैं कि एक शिवली फूल बोल के एक फूल होता है, वो ये फूल का सीजन है. लेकिन वो वाली खुशबू ना यहाँ भी आती है, लाइक आई मीन यू स्टेप आउट एंड यू नो दैट अरे इट्स द नवरात्र वाला सीजन, क्योंकि वो खुशबू आ रही है हवा में, तो मीठी मीठी सी मिठाइयों की खुशबू. आई डोंट नो, मे बी इट्स माई हेड, मे बी आई एसोसिएट विद इट, बट ऑफकोर्स आई एम फीलिंग दैट. आर यू गाइज फीलिंग इट? तो गाइज लेट्स गेट ऑन विद आवर शो टुडे. यस, टुडे वी गॉट लॉट्स ऑफ फन, मस्ती, गाने एंड लॉट्स ऑफ चिट चैट कॉन्वर्सेशंस. लेकिन उसके पहले एक छोटा सा गाना एंड देन वील बी बैक. डोंट वरी, मैं आपके साथ पूरे 10 बजे तक रहने वाली हूँ. ऑल द वे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, यू गाइज आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड दिस इज माई शो.

हाय हाय हाय, ये इतना बोलते बोलते तो भाई हम भी आ गए। कितना हाय हाय हाय, कितना सुंदर वेदर है। बट अभी थोड़ी देर बात करते हुए वेदर के बारे में, थोड़ी देर पहले वेदर के बारे में बात करते करते मैंने मेंशन किया था श्यूली फूल की खुशबू, और वहीं से हमारे जो लिसनर्स है, बंगाली कम्युनिटी जो है, आपको वैसे पता नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर हमें बंगाली कम्युनिटी उतने दिखते नहीं है DFW में, बट देर इज़ ए ह्यूज ह्यूज बंगाली कम्युनिटी इन DFW। यहाँ तक कि जो दुर्गा पूजा होती है DFW में, अभी टाइम हो रहा है दुर्गा पूजा का, एट द एंड ऑफ दिस मंथ कम से कम 8 नहीं तो 10 दुर्गा पूजा मनाई जाती है, एंड दे आर ऑल ह्यूज इवेंट्स। दे ऑल फ्लाई डाउन आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड इट्स क्वाइट एन अमेजिंग इवेंट। अगर वैसे आई एम नॉट प्रमोटिंग द इवेंट, आई एम जस्ट सेइंग यू कैन गूगल सर्च इट एंड फिगर इट आउट। हाउ एवर, उन्होंने बोला कि भाई कोई बंगाली गाना बजा दो। मैंने कहा यार बंगाली तो हम नहीं बजा सकते क्योंकि हम लोग हिंदी रेडियो है। हाउ एवर भाई, बॉलीवुड में भी बंगाली फ्लेवर के बड़े सारे गाने आ रहे हैं, यू नो दैट टिपिकल भाटियाली एंड द फोक म्यूजिक स्टाइल। तो इसीलिए आपके लिए ये वाला गाना।

वी आर बैक माय फ्रेंड्स. भाई अगर आप घर वर लेने का सोच रहे हैं, बिकॉज अपेरेंटली देर आर सो मेनी हाउसेज आउट देयर ऑन द मार्केट एंड देर नॉट इनफ बायर्स, यू नो, बिकॉज ऑफ ले ऑफ्स एंड थिंग्स लाइक दैट, देन दिस इज द टाइम, बिकॉज मे बी द इंटरेस्ट रेट इज लोअर और मे बी द हाउसिंग प्राइसेज आर लोअर. रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक. दे हैव हेल्प्ड फैमिलीज सिंस 1998 अक्रॉस द कंट्री for mortgage solutions, whether it's buying or refinancing. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com. Bhai, Dream Home Mortgage, aapke sapno ka ghar ekdam saakar ho. Hamari sab ki dua aur pure furniture ki dua yehi hai. To isi liye deri mat karo guys. Uthao aur phone ghumao. Maybe they can help you out. Aur baakiyon ko jalao.

एंड वी आर बैक गाइस. तो भाई अगर आप अपने टैक्स सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं और इफ़ यू हैव फॉरगॉटन टू पे योर क्वार्टरली टैक्सेस एंड और यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट देन यू नीड टू रीच आउट टू एजी फिनटैक्स बिकॉज दे ऑफर टैक्स एडवाइस अकाउंटिंग पेरोल एंड अदर बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. कॉल 469-942-9888 और विजिट agfintax.com टुडे. गाइस टैक्स इन US इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सो ऑनेस्टली इफ आई वर यू आई वुड सीक आउट एक्सटर्नल हेल्प विच आई ऑल्सो डू बाय द वे जस्ट सो यू नो. अगर आपको ऐसी किसी एड पे विश्वास नहीं है तो भाई हमसे भी एडवाइस ले लो. आई तो डोंट डू माई टैक्सेस बाय माई सेल्फ, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, आई कैंट. But if you need some help, definitely reach out to AG Fintechs.

Guys, do you own a business and are you struggling to get like some clients or some footfall into your business? Chahe wo restaurant ho, ya maybe you have a boutique somewhere, or maybe you have a salon somewhere. It's kind of hard to especially optimize the Google search engine and all of that. Well, don't worry because Fun Asia has launched a new networking product. This one's called Smart Reach AI. Well, because by the end of it, हम लोग पैसे देके एड वगैरह तो डाल देते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली क्लिकिंग ऑन योर एड. इट्स अबाउट हाउ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर सेल्स. स्मार्ट रीच एआई पता है क्या है? इट्स अ प्रोडक्ट विच फनेशिया हैज लॉन्च. इट हेल्प्स यू रीच पोटेंशियल लोकल कस्टमर्स. तो ये नहीं है कि आपका एड कहीं पे कोलोराडो में जाके दिखा रहे हैं. इट विल हेल्प यू रीच आउट टू लोकल कस्टमर्स एंड इवन दोज विजिटिंग योर कंपेटिटर्स. तो जैसे अगर आपका रेस्टोरेंट है एंड यू सर्व पंजाबी फूड एंड आपके पड़ोस में ही एक और आंटी पंजाबी फूड बेच रही है, लेकिन आपके सारे कस्टमर्स तो वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हैं, तो आप उनके लीड्स भी ले सकते हो. तो ये वाले एड्स कहाँ पे आपको मिलेंगे? दे कैन यू कैन प्रमोट अक्रॉस रेडियो, डिजिटल मीडिया, स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑनलाइन ऑडियो. देन मेजर वॉट ट्रूली मैटर्स, की कॉल्स, बुकिंग्स, ऑफर, रिडेम्पशंस, एक्चुअल विजिट्स टू योर बिजनेस, या फिर जस्ट सम गूगल एड दैट्स गोना शो अप ऑन द साइड ऑफ द ईमेल. ओके, विजिट स्मार्ट रीच एआई डॉट यूएस एंड टर्न लोकल अटेंशन इनटू कस्टमर्स. दैट इज राइट गाइज. तो डोंट फॉरगेट बिजनेस ओनर्स, दिस वन स्पेशली फॉर यू गाइज. ऑलराइट, वी आर गोना गो इनटू अ सॉन्ग, लेकिन सॉन्ग के बाद जब आएंगे वी आर गोना प्ले ए छोटा सा गिव अवे राउंड. क्योंकि आज हमारे पास एक नहीं दो दो गिव अवे है, एंड 8 o'clock इज आर रेगुलर गिव अवे. सो स्टिक अराउंड.

तो गाइस विदाउट फर्दर अडू लेट अस प्ले द गेम। भाई गेम बहुत सिंपल है, इट्स कॉल्ड द वर्ड अंताक्षरी। आपने पहले भी खेला हुआ है मेरे साथ तो, लेकिन आज का गिव अवे है क्या? इट्स फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एंड हियर इज योर चांस टू विन $10 ऑफ ऑन ए टोटल बिल ऑफ $50 और मोर, प्लस एंजॉय अ स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज डेली फॉर लंच ओनली। They are located right off of McDermott Bites. We are talking about Chandigarh Bites, just so you know. They're located right off of McDermott Drive in Allen. Visit chandigarhbites.com for more details. Please make sure कि आपने ये वाला giveaway या कोई और giveaway पिछले एक महीने में नहीं जीता है। एक वैसे महीना अभी शुरू हुआ है technically. So if you have won in September, then you can play this game. लेकिन अगर पिछले हफ्ते October शुरू हो गया था, अगर आपने कोई giveaway जीता है पिछले हफ्ते, then try and give other people a chance as well, okay? Oh, okay, because, yes, we want to be fair. So my number is 972-235-5555. मैं गाने का शुरू का बजाऊंगी और आपको उससे गाना गाना है, कोई भी उसमें से एक वर्ड उठा के।

okay, because yes, we want to be fair. So my number is 972-235-5555. मैं गाने का शुरू का बजाऊंगी और आपको उससे गाना गाना है, कोई भी उसमें से एक वर्ड उठा के उसमें से गाना गाना है, ठीक है? तो लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू द सॉन्ग.

0: चलो एक और बार बजाते हैं जस्ट इन केस. एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी?
1: आई कैन हियर यू. कैन यू हियर मी?
0: यस, एब्सोल्युटली. ओके, पहले तो टेल अस योर नेम एंड देन टेल अस द सॉन्ग, बट यू हैव टू सिंग द सॉन्ग, दैट्स द कैच.
1: Awesome. My name is Ritesh and the song is Yuhi Kat Jayega Safar Saath Chalne Se. I was using the word Yuhi.
0: Haan, absolutely. Go for it. Baki aur bhi thoda sa gaado yaar. Badi achhi awaaz tumhari ka. Go for it.
1: Yuhi Kat Jayega Safar Saath Chalne Se. Ki manzil aayegi nazar saath chalne se.
0: Kya baat hai, everybody give us zoro shoro se taaliyan for Ritesh. You are such a good sport for singing that whole thing, and this is so amazing, guys. I love it when you all participate in the game very nicely. So congratulations Ritesh, aap jeet chuke hain the giveaway from Chandigarh Bites. ठीक है, आई एम गोइंग टू प्ले द सॉन्ग इन दिस बैकग्राउंड. प्लीज स्टे ऑन द लाइन बिकॉज देन आई नीड टू टेक योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आई विल टेल यू हाउ टू रिडीम इट. गाइज, यू एंजॉय दिस सॉन्ग क्योंकि ये गाना बहुत सही है.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
3: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
2: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
5: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
2: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
5: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
6: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: That garba was totally worth it. We had so much fun.
8: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
7: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
9: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
10: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
11: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
12: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।

तो गाइज, इस वीकेंड पे देर इज़ अ रियली कूल इवेंट दैट्स हैपनिंग. इट्स कॉल्ड गृह प्रवेश. अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन रिटायरिंग इन इंडिया, देन इट माइट बी अ चांस टू इन्वेस्ट इन अ हाउस इन इंडिया. और उसको कैसे पता चलेगा, हम यूएसए बैठ के हमें तो नहीं पता चलता इंडिया में व्हाट इज़ अ मार्केट एंड ऑल दैट. दैट्स वाई यू नीड टू गो टू दिस इवेंट कॉल्ड गृह प्रवेश इंडिया. दिस इज गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो. इट्स प्रेजेंटेड बाय माई स्क्वायर फीट, द बिगेस्ट इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो विच इज बींग हेल्ड इन फ्रिस्को. मीट लीडिंग डिवेलपर्स अक्रॉस बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे and Delhi NCR and explore over 200 exciting projects that are going to start in this area all under one roof. So whether you're a Delhi wala ya Bangalore wala ya Tamil wala wali, doesn't matter, wala wali doesn't matter, join them on 10th October and 11th October subah 10 baje se raat ke 8 baje tak at Hyatt Regency in Frisco. Entry bilkul free hai, पार्किंग भी बिल्कुल फ्री है. दिस इज़ योर परफेक्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड इट कुड बी वेटिंग फॉर यू. सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो बैक टू इंडिया बिकॉज यू नो यू आर अनश्योर ऑफ योर वीजा सिचुएशंस, और हाउएवर इफ यू डोंट वॉन्ट टू रिटायर हियर इन अमेरिका एंड यू वॉन्ट टू गो बैक टू इंडिया एंड रिटायर, या फिर यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस फॉर योर पेरेंट्स, या फिर आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, घर खरीद के उसको रेंट पे डालो सो पैसिव इनकम होती रहेगी. Any of these options, अगर आपसे related है, then definitely go for the property expo. I think this would be a really, really good option. ठीक है? हम लोग एक गाना और सुनते हैं, and उसके बाद जब हम आएंगे, it'll be around 9 o'clock. We will continue more of the conversation that we were listening to अभी थोड़ी देर पहले. लेकिन तब तक के लिए आप ये गाना enjoy.

0: में खाना तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शियर सब बंद पैंट की टकी।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस।
3: And guys, we are back. Yes, this is Ippy the Hippie and you are still listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Dallas. Now, here's the thing. Talent to sabse zyada zaruri hai, of course. Lekin, first impressions jo hai na, they open the doors for you. They make those reservations, okay? Trust me, when you start working on your appearance and when you start working on your first impression, you will see reactions from people that you have not ever received it. And it's as simple as maybe just changing up your diet or adding a little exercise in your routine. Okay, many of us grew up in homes where sabse zyada zaruri tha grades, job, family care, pay off loans, make enough money, ghar, gaadi, ye sab, sabse priority, ye sari cheeze, material cheeze. Okay, nobody taught us really, unless you've had an older sister or something. Nobody really taught you hair care, skin care, clothes, fitness, a diet, just a simple 30-day change, like a 30-day plan to improve yourself, level up from say a 5 to a 6, you know. Now, you don't need expensive products, you don't need to have luxury items in your closet for any of that. No ego, just some minor little upgrades. Wo jo purani si jo bilkul si jo faded t-shirt ho gayi hai na, jo ekdam dheeli dhali ho gayi hai, usme se elasticity bhi chali gayi hai uski, ekdam aisa lag raha hai ki kambal dal ke aayo. Maybe it's time to get rid of that t-shirt and get a new t-shirt. Or, ya fir, you know, maybe just start investing in a little hair gel and put your head backwards. And instead of aise jungli ki tarah nahi baal phele hue hain, theek hai? By the end of it, aaj ka promise mera ye hai aapse, by the end of today's discussion, all the way until 10 o'clock, you will have a simple system for hair, skin, clothes, fitness and something, you know, just to upgrade your life a little bit. And you will feel like the best version of you, not a copycat of someone else. You will feel like yourself, trust me, but the best version. Culture or tradition jo hai, isi ki strength hai, we'll work with them, not against them. Theek hai? Toh, sabse pehle, ye cheez hai, especially for my guys, okay? You guys have heard this thing, at least meri family mein toh, you know, I've heard my dad say this so many times, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये कपड़े वपड़ों का शौक नहीं है, आई ओनली लाइक सिंपल थिंग्स, आई एम अ सिंपल गाय. आई मीन येस, नोबडी इज सेइंग दैट यू आर नॉट अ सिंपल गाय, बट दैट डजंट मीन यू कीप वेयरिंग द सेम पेयर ऑफ पैंट्स दैट यू हैव बीन वेयरिंग फॉर द लास्ट 10 years. यू नो, यू हैव लॉस्ट सम वेट, नाउ यू कैन फिट इन टू बेटर क्लोथ्स, देन जस्ट गेट द राइट साइज क्लोथ्स. पहली चीज तो अपने कपड़े जो है ना, ठीक अपनी साइज के हिसाब से पहनो. कई लोग अब ढीले ढाले पहनते हैं एंड इट लुक्स अ लिटिल स्लॉपी, या फिर यू डोंट नो हाउ टू स्टाइल योर बॉडी शेप. देयर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट देयर ऑन यूट्यूब, वेदर यू हैव अ पेयर शेप बॉडी, आवर ग्लास बॉडी, ट्राइंगल शेप बॉडी, स्क्वायर शेप, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं वेयर पीपल आर एनालाइजिंग एंड दे शो यू वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स फिट रियली वेल एंड आर फ्लैटरिंग टू योर करेंट बॉडी टाइप. जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. पहले तो बाल, यू नो, योर हेयर. नाउ थिक, वी आर साउथ एशियंस, यू नो, वी आर गिफ्टेड विथ रियली गुड हेयर. मोस्ट ऑफ अस आर गिफ्टेड विथ थिक ब्यूटिफुल डार्क हेयर विच ग्रोज रियली रियली फास्ट एंड शोज द ग्रो आउट वेरी क्विकली. तो इफ नथिंग एल्स, लर्न टू ट्रिम योर हेयर. इफ यू डोंट हैव द मनी टू गो टू अ, यू नो, अ सलोन और वट एवर, इवन इफ टू अ ग्रेट क्लिप्स, लाइक इवन इफ यू कांट अफोर्ड अ $10 हेयर कट, वेल, फिगर आउट हाउ टू डू इट बाय योर सेल्फ. ट्रस्ट मी, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक मी. वेन कोविड हैपन्ड, आई टेल यू दिस एज अ फैक्ट, वेन कोविड हैपन्ड, और मेरे बाल बहुत लंबे जल्दी जल्दी बड़े हो जाते थे. व्हेन कोविड हैपेंड इन 2020 आई हैड नो ऑप्शन ऑफ गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग लाइक $30 ऑन अ हेयर कट और समथिंग लाइक दैट. सो देन आई एक्चुअली वॉच सम यूट्यूब वीडियोज एंड आई लर्न टू कट माई हेयर बाय माई सेल्फ. लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग, आई वुड गिव माई सेल्फ यू नो, एंड आई स्टिल डू इट समटाइम्स.

भाई गाइस, अगर आप कोई इवेंट प्लान करने की सोच रहे हैं, सच एज अ वेडिंग और अ बर्थडे और अ ग्रेजुएशन, एंड यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट डेजिग्नेट समवन टू हैंडल ऑल द प्रेप फॉर यू, बिकॉज इट्स नॉट फन टू बी डूइंग ऑल दिस लॉजिस्टिक काम. यहाँ पे केटरिंग कौन दे रहा, टेबल क्लॉथ लाओ, ये करो वो करो, केक कहाँ गया, ऑल ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन बाय योर सेल्फ विद टेक्स बेसिकली द फन आउट ऑफ द इंटायर इवेंट फॉर यू. सो यू विल बी केटरिंग टू द गेस्ट वायर्स, एवरी वन एल्स इज गोन हैव फन. सो इसीलिए यू नीड टू रीच आउट टू विनेसा इवेंट्स, बिकॉज दे ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, चाहे वो वेन्यू हो, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, केटरिंग हो, विच इज़ बाय द वे एक्सक्लूसिवली डन बाय बसेरा ग्रैंड. कॉल हरी बसेरा एट 4694428770. विनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

गाइस आगे बढ़ते हुए, टेक्सास प्राइमरी केयर इज नाउ हियर इन DFW. वेल दे आर नॉट न्यू, वैसे तो पिछले 13 साल से दे हैव प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी. हाउएवर अब दे हैव अ न्यू नेम एंड अ ब्रांड न्यू लोकेशन, एंड इट्स अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, एंड इट्स कॉल्ड लनॉक्सी मेडिकल. इट्स फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एंड दे हैव प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग्स, एक्सरे, सीटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स, हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज एंड सो मच मोर. एवरीथिंग अंडर वन रूफ. दे आर ओपन 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. You can walk in anytime and no appointments are needed.

टेक्सास बिजनेस ओनर्स, अगर आप कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं एंड यू आर टायर्ड ऑफ डीलिंग विद ऑल दीज अदर प्राइवेट एनर्जी कंपनीज, एंड रीच आउट टू तारा कमर्शियल एनर्जी बिकॉज दे यू कैन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी. दे आर प्राउडली सर्विसिंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002 and so over like 20 years with competitive rates, reliable service and customized energy plans. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com. guys, this is 9:43 on the clock. mere jaane ka time almost ho raha hai. main aapke sath bas 15 minute aur hi rehne wali hu, lekin aage badhne se pehle, before I clock out for today, हम जो चीज़ें बात करे थे, थिंग्स लाइक हेयर केयर, द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू मैंशन इन माई लिस्ट विच आई थिंक समथिंग स्पेशली द गाइज टेक इट फॉर वेरी वेरी ग्रांटेड इज स्किन केयर. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, स्पेशली फॉर ऑल माई मैन आउट देयर, यू नो, वी गर्ल्स रियली टेक केयर ऑफ आर फेस गार्ड, बट यू गाइज ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ इट. बिकॉज ट्रस्ट मी, फेस इज वेयर पीपल आर एक्चुअली रीडिंग यू, दे आर लुकिंग एट योर फेस. सो If you want to get at better chances, just remember this. You are in America. You are not just competing with other South Asian people anymore, but you are competing with South Asian people who are born and brought up in the US. One, you are competing with people of all other races, because a lot of people are not choosing. A lot of girls I know who are Indian and Pakistani, they're also choosing to date outside of the South Asian community, which means they are open to dating Americans, like different other races. So you are competing with a lot of people, so you really need to pull up your game over here. You really need to get good at your game. So first of all, skincare, jab baat karte hain, bahut three simple steps hai. One, cleansing. Second, moisturizing. Three, sunscreen. Sunscreen is very, very important. Sunscreen, I know a lot of guys do not take it for granted. Kuch saalo pehle to India mein bhi men's fairness creams ka trend shuru ho gaya tha, where I think Shah Rukh Khan was the one who was marketing Fair and Handsome. Bhai, aapko Fair and Handsome ki zarurat nahi hai. Trust me, you don't need all that. You just need a good skincare routine. To pehli cheez to ye, morning and night, do time wash your face with a gentle facial cleanser. This is my personal story. A few years ago, I had this guy friend, और उसने मेरे को बोला कि यार रिपी, चल मुझे ना टारगेट से कुछ शॉपिंग करनी है, एंड देन वी कैन गो हैंग आउट एंड मीट दी अदर फ्रेंड्स. मैंने चलो ठीक है, चलो लेट्स गो टू टारगेट. मैंने कहा तेरे को लेना क्या है टारगेट में? तो कहता है कि मुझे ना एक बॉडी वॉश लेना है, मुझे दो बॉडी वॉश लेने हैं. मैंने कहा अच्छा, व्हाई डू यू नीड टू बॉडी वॉशेस? तो कहता है एक टू बेथ विथ एंड द सेकेंड टू पुट इट ऑन माई फेस. फिर मैंने, आई लुक्ड एट हिम वेरी पजल्ड. मैंने कहा भाई तुम बॉडी वॉश शक्ल पे लगा रहे हो? तो कहता है हाँ, वो भी साबुन है, ये भी साबुन है, तो मैं दो अलग रखता हूँ ताकि मुझे पता चले एक फेस. मैंने कहा तुम्हें पता है ना, फेस के लिए फेस वॉश होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज है, और मेल फीमेल कुछ नहीं होता उसमें, दे आर ऑल द सेम. बाय द एंड ऑफ इट यू हैव टू चेक व्हाट इज द कॉम्पोजिशन इन इट. ऐसा नहीं है. तो कहता है अच्छा, फेस वॉश अलग मिलता है? मैंने कहा हाँ जी भाई, चलो लेट मी शो यू. सो देन दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग. There's special gentle facial cleansers which are available in all kinds of brands. Get one of them. Wash your face morning, evening. Number two, moisturize it, okay? Yes, agar aapki skin oily hai and you have acne issues, even then moisturize it. But then check the non-comedogenic moisturizer, ya fir oil-free moisturizers, ya fir moisturizer meant for oily skin. There are specific ones that are available. Please go look at it. And number three, by the way, is sunscreen. Why is sunscreen important? Just because we are South Asian skin type, I know we don't get sunburn, but we all get skin tanned. और जो एक age के बाद वो आपके शक्ल पे जो ज़्यादा झुर्रियाँ आ जाती है ना, आपके पैरों शक्ल पे दिख रहा होगा. Sun exposure to sun makes those wrinkles more and more prominent. Your face is gonna get wrinkled faster if you don't put sunscreen. Most of those wrinkles, yes, old age to hai, but there's also a lot of sun damage. Deeper skin tones, they tan, lekin usme aapko dark spots ho jate hain zyada, because aapki skin mein melanin zyada hai, okay? And people start to look like 10 years older from UV exposure.
So definitely, even if you are brown, definitely use a sunscreen. I use it every single day. There are tinted sunscreens, so it doesn't look really bad on your face. But definitely use these three tips. Okay, guys, आगे बढ़ते हुए, let's listen to the song and then I will come back to say bye to you properly.

एंड गाइस वी आर बैक। यस, मैं आपसे सिर्फ बाय बोलने के लिए ही आई हूँ। देखा, मैं पूरा एंड तक रुकी हूँ आपको बाय बोलने के लिए। तो डोंट वरी, कम बैक टुमारो। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सम मोर ऑफ दीज डिस्कशंस ऑन हाउ यू गाइस कैन इम्प्रूव योर चांसेस ऑन गेटिंग दैट ब्यूटिफुल लेडी हु इज वेटिंग टू बी योर लाइफ पार्टनर। यस, गर्ल्स हैव गॉन अहेड इन देयर गेम बाय द वे। दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन, they're taking care, doing hair care, they're wearing like really incredible clothes, and they're actually making very good money. A lot of women are. So guys, if you really want to get better at your chances on finding a life partner or a girlfriend, whichever the case may be, you need to provide something more than just the financial security, which means you need to start looking at all the other things that you have been just kind of skating by and ignoring all these years. तो अभी वो सारी चीज़ें कर लो, अपना थोड़ा होमवर्क कर लो, फिर अपने आप ही आपको लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लाइफ इज़ गोना बी सो ईजी। लेकिन उसके पहले आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइज टमोरो। बाय गाइज़।

0: Oh my God!
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
0: पर क्यों?
1: क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
0: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
1: क्या

0: Don't touch that dial. Keep listening.
1: Yeah,

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

बस आशिकों पे रहे।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
4: डैलस आर यू रेडी जागो टाइम्स ग्रुप पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 द जागो टाइम्स कमीशन जागो भी जगाओ भी एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया
5: हाय गाइस दिस इज टाइगर श्रॉफ एंजॉय फन एशिया रेडियो

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ, फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
4: FM Funasia Radio. क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट once used to be a currency? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट was money. Imagine आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे. जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है. मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का Funasia Radio के साथ.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे। इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

0: Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: That garba was totally worth it. We had so much fun.
4: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
3: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
5: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
6: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
7: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.

104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.
1: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज़।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.
2: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर.
3: Oh my God, this is original.

0: कितने आदमी थे?
1: सर्कल पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट इन योर करियर? वी आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स टू जॉइन आवर टीम अक्रॉस मल्टीपल पोजीशंस. इफ यू आर बिटवीन 25 एंड 40 विद एक्सपीरियंस in media, sales, or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
8: Hi, Dallas. This is Ranbir Kapoor, and you're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो

जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: One is your one. Oh,
1: it's the time to clock out. It's the time to catch up.
2: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिज़लिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
4: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
3: Miss Clicks?
5: 100 logon ne click bhi kiya.
3: Customers kitne aaye?
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
5: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
7: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Phanasia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: सर लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में पड़ चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए?

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था।

0: हो गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growth team. Mail at careers@funasia.net.
5: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Funasia Radio.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

Let's go ahead and get started with our program today on this lovely Tuesday morning. Ladies and gentlemen, it is the 6th of October. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banayi, chaand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai, jisne mujhko, aapko, aur ye saari kainat ko, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम दिस लवली मॉर्निंग. वेलकम टू द शो.

0: छत पे लेट के गिन चुका हूँ जो रोज वो सितारे गिनूं, क्यों न जाने
1: दोस्ती की
0: दोस्ती में दिल ना लगे सबसे
1: वास्ता You speak English?
0: तोड़ ताड़ के
1: Get out.
0: चाहता हूँ तेरा बनूं अपने फैसले

0: Let's round off this first hour of our program. You got lots and lots of information, and those of you that missed it, well, we have another very busy hour coming up. It's 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha?
9: Suno na, mera wo wala set kahan hai?
10: Kaun sa?
9: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
10: अरे सारे तो सेम है
9: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
10: ओ हाँ ये तो अलग है
11: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
13: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है
14: कितनी लंबी लिस्ट है
13: बस दो पेजेस इंडियन ड्रेसेस मिठाई नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी
14: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो SFL वर्ल्डवाइड है ना इंडिया में आपके डोरस्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं पूजा मंदिर हो झूला हो या फर्नीचर सामान छोटा हो या बड़ा ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है
15: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्डवाइड शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्डवाइड विजिट SFLworldwide.com
11: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
15: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
11: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
15: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
11: सुबह ड्राइव पे
16: यू आर लिस्निंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो
17: दोपहर फोन पर
18: आई डोंट लिसन टू स्पॉटिफाई आई लिसन टू फनीशिया रेडियो
11: शाम को घर पर
1: You are listening to Fun Asia Radio.
11: Your customers are everywhere. तो आपका बिजनेस सिर्फ एक जगह एडवर्टाइज क्यों हो?
17: Fun Asia Network के साथ कस्टमर्स तक पहुँचे रेडियो से डिजिटल तक एंड विद स्मार्ट रीच AI, टेक योर बिजनेस टू लोकल कस्टमर्स वाइल ट्रैकिंग कॉल्स बुकिंग्स और विजिट्स अ 360 डिग्री एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस सो कस्टमर्स कैन हियर अबाउट यू सी यू एंड कनेक्ट विद यू
11: टू एडवर्टाइज कॉल 469-424-3188 और ईमेल sales@funasia.net
17: Fun Asia Network. Be heard, be seen, be chosen.
19: दिल की बात किससे कहें?
20: पंडित गुरुदेव से 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग बर्थ चार्ट एनालिसिस पाम रीडिंग और फेस रीडिंग ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज प्यार शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए कॉल 469-581-1777 That's 469-581-1777. Pandit Gurudev, aaiye, apni baat kahiye.
0: सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
21: A.R. Rahman, live with a full orchestra. Experience the Grammy and two-time Academy Award-winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.
22: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show on this lovely Tuesday morning. We touched 86 yesterday and looks like it's going to be mid-80s again today. It's a gorgeous week. Today you are waking up so far to the coolest morning of the fall season right here in North Texas. Some areas had temperatures in the upper 50s and low 60s and clear skies. As we go outside, and you know, I don't know if you have time for a little walk before heading off to work, but it is an absolutely beautiful morning. Welcome to the show. We'll start with a title track.

0: नहीं।
1: एक और लड्डू ले लो।
2: थोड़ी और बिरयानी।
1: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
3: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
4: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
5: अरे यार, घर मिल गया।
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
7: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
7: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट him.
8: That garba was totally worth it. We had so much fun.
9: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
8: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
4: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
13: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
1: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
13: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
14: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
7: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
14: Barista House, richness of biryani bliss.

0: 20 साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Bindas bolo, bolo bolo bolo, bindas bolo.
4: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti, or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Vanisha Radio par.
5: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग
3: इट्स ट्रू हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
6: बेटा 95% आए
7: हाँ मम्मी
6: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
8: मेरा
6: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी
10: सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
11: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट वी हैड सो मच फन
12: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग बट इट्स सो लेट Where can we eat now?
11: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
13: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
14: Order. Mr. Impressions, campaign ka result.
15: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
14: Miss Clicks.
16: 100 logon ne click bhi kiya.
14: Customers kitne aaye?
17: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
16: Marketing mein clicks nahi, customers mein.

लवली तो मैं हर रोज हो जाती हूँ क्योंकि मुझे आपसे जो गपशप करने का मौका मिलता है। सुन रहे हैं आप 104.9 FM फनीशा रेडियो, दिस इज रमिता एंड वेलकम टू गपशप गली। 8 मिनट्स पास 10 o'clock, आज है ट्यूसडे October 6th और सुबह से ना बहुत सारे सवाल दिमाग में घूम रहे हैं एंड इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। लाइक उन सब कपल्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स और ऑनेस्टली हर रिलेशनशिप के लिए जहां दोनों केयर तो बहुत करते हैं लेकिन कम्युनिकेट बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। एक बंदा है जो हर डिटेल शेयर करता है, लाइक मैं निकली, मुझे ट्रैफिक मिला, कॉफ़ी पिया, पार्किंग नहीं मिली वगैरह वगैरह, और दूसरा जो सिर्फ एक वर्ड में कोट अनकोट रीच्ड बोल के छोड़ देता है। एक को कॉल्स पसंद है, दूसरे को टेक्स्ट, एक प्रॉब्लम सुनते ही सोल्यूशन देता है, दूसरा बोलता है यार मैंने सोल्यूशन नहीं मांगा था, मुझे बस सुन लो। यू नो कभी कभी कम्युनिकेशन स्टाइल का डिफरेंस केयर की कमी लगने लगती है, जबकि केयर प्रेजेंट होती है, बस उसका डिलीवरी का स्टाइल अलग होता है। तो डैलस वालों, आज का सवाल आपसे ये है कि आप अपने रिलेशनशिप में कॉलर हो, टेक्स्टर हो, वॉइस नोट पर्सन हो, या फिर वो वाले बंदा जो सिर्फ यही बोलता है कि घर आके बात करेंगे। टेल मी, आज डिसाइड नहीं करेंगे कौन बेटर है, बट लेट्स गपशप एंड कंटिन्यू गपशपिंग।

16 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Fanisha Radio. और प्यार करने वालों, अगर बात भी एक दूसरे से ठीक कर लो तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है. दिस इज गपशप गली विद मी रमिता, और गपशप है आज अबाउट योर कम्युनिकेशन इश्यूज. यस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्टिंग. लाइक एक मैसेज आया, उसका ब्लू टिक, बट कुछ रिप्लाई नहीं. जो मैसेज भेज रहा है उसके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होते. क्या वो बंदा अपसेट है, इग्नोर कर रहा है, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था. बट जिसने मैसेज रिसीव किया है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही दिमाग में बात चल रही होती है कि मीटिंग के बाद या फ्री होने के बाद प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे. यार साइलेंस सेम होता है बट दो अलग अलग कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरीज होते हैं, सिचुएशंस होती है. कुछ लोग क्विक एक्नॉलेजमेंट को केयर मानते हैं और कुछ लोग हाफ रिप्लाई से बेटर डिलेड बट थॉटफुल रिप्लाई उसे मानते. प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सपेक्टेशन कभी एक दूसरे के साथ डिस्कस ही नहीं होती है. सिंपल सोल्यूशन है इस बात का, बिजी हूं बाद में रिप्लाई करता हूं. 5 सेकंड लगता है यार, इतना इमोशनल इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है. और जो मैसेज भेज रहा है उसको मेरा कहना है यार, हर डिलेड रिप्लाई रिजेक्शन नहीं होता. इट्स जस्ट दैट लाइफ इज बिजी. DFW वालों, अपने क्लोज बंदे का रिप्लाई कितनी देर ना आए तो आप नोटिस करते हो. 10 मिनट, 1 घंटा, हाफ ऑफ द डे, या जब एक्चुअल काम हो तभी. वैसे इसका कोई सही आंसर तो है नहीं, बस कंपैटिबिलिटी का एक डेटा है जो हम गपशप में डिस्कस कर रहे हैं. अब एक और एक गाना, बिकॉज उसका एक इमीडिएट रिप्लाई होता है.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Welcome to the Shadi Memory Test. Rapid fire round start karte hain. Decorations ka color.
3: Next question.
2: Bride ki entry song.
3: Yaad nahi.
2: Buffet mein kya tha?
3: Chana papri chaat, bihari kebab, dilli nihari, achari chicken, mutton biryani.
1: Shadi mein baaki details bhool sakte hain, lekin khana kabhi nahi. Gatherings 50 ki ho ya 500 guests ke liye. Choose signature cuisines, customized catering, live cooking stations and professional service. Call 972-905-5449. Signature cuisine, the taste your guests will remember.
4: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
1: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023-2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज़ एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
5: Stop! Festive fashion check. Navratri ke outfits ready hai?
6: Do chaniya choli hai. Mix and match kar lungi.
5: Fashion violation. Same outfit ko 9 raat overtime.
6: To solution?
1: Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Explore a stunning collection of stylish, contemporary chaniya cholis for a new look every day in Navratri. Planning a wedding? Discover quality wedding and customized bridal wear for men and women at great prices. Call 945-444-2194 or explore jyotikapateldesigns.com. Indian ethnic wear by Jyotika Patel. Designed for celebrations.
7: अगर मैं कहूँ तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160 तो क्या कहोगे?
6: क्या?
2: ड्रीम में रियलिटी चेक. अक्सर डर बीमारी का नहीं, उसके पकड़े जाने का होता है. लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए.
1: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट. न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम. कॉल 469-649-9995 और विजिट aimallen.com.
8: बिंदास बोलो. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
9: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ अनीशा रेडियो पर.

यार रिलेशनशिप में कोई भी कभी भी किसी का भी कसूर होता नहीं है। मेरी बात मानो, कसूर बस कम्युनिकेशन का स्टाइल डिफरेंट है, इसीलिए होता है। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनी शेयर रेडियो। दिस इज गपशप गली, जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल। अगर कोई बंदा आपको आपके सामने है और आपको बोलता है कि यार आज का दिन ना टेरिबल था, और आप इमीडिएटली सोल्यूशन मोड में आ जाते हो कि अच्छा तुम ये करो, वो करो, इसे कॉल करो, कल ये कर लेना। अरे भाई, सामने वाला सिर्फ आपको ये बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है कि मुझे सिर्फ वेंट आउट करना है, आपसे कोई एडवाइस नहीं लेनी है, कोई सोल्यूशन नहीं मांगा मैंने। इसीलिए बहुत ही यूजफुल वर्ड है ये चार वर्ड, सुनना है या सॉल्व करनी है या सोल्यूशन चाहिए। व्हाट यू थिंक, आर यू द वेंटिंग आउट पर्सन और द वन जिसको सिर्फ आपके दोस्त के लिए, पार्टनर के लिए ऑल यू डू इज जस्ट लेंड योर इयर्स।

0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
1: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया।
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया।
1: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-7772. That's 972-863-7772.
3: Visit www.senadainc.com today.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
9: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
10: डील कहाँ?
9: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
11: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है।
12: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
13: कितनी लंबी लिस्ट है?
12: बस 2 पेजेस। इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
13: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
14: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
15: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
16: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
15: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
16: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
13: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस, नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर। डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
11: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
13: Barista House, richness of biryani bliss.
17: Customers Hindi mein milte hain, Telugu mein bhi, Punjabi mein bhi aur Tamil mein bhi. तो एड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
11: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. Funasia Network, one network, many languages and maximum reach.

हैरत है इस बात की कि हर रिलेशनशिप में टोन, ये जो आपका टोन होता है ना, जैसे आप बात करते हो उसके मुताबिक सारे सिचुएशंस बिल्कुल हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। और उसी के बारे में गपशप इज ऑन गपशप गली विथ मी रमिता, ओनली ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो। यू नो, रिलेशनशिप में एक सिंपल क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं बोल रही थी, जो टोन के साथ पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। दैट क्वेश्चन इज कहाँ हो। प्यार से बोलो तो केयर लगता है, थोड़ा टोन चेंज कर दो तो इट एक्चुअली फील्स लाइक एन FBI इन्वेस्टिगेशन। लाइक सेम विद द वर्ड रीच्ड, समटाइम्स इट्स वेरी स्वीट, यू नो, समवन जस्ट वॉन्ट्स टू नो वेदर यू आर सेफ, यू रीच्ड योर डेस्टिनेशन वेर यू वर सपोज टू गो। बट क्वेश्चंस लाइक निकले, कहाँ पहुँचे, कितनी देर, सडनली यू फील लाइक एन अमेजन ट्रैकिंग, आई मीन अमेजन पैकेज बींग ट्रैक्ड। लाइक हर कपल का कम्फर्ट लेवल डिफरेंट है, आई अग्री। मे बी सिंपल रूल रखो यार, प्लान चेंज हो गया या फिर लेट हो गए, सो जस्ट टेक्स्ट इट, हर मिनट बाय मिनट अपडेट, क्वेश्चंस व्हाई। DFW आपके रिलेशनशिप में कंपलसरी अपडेट्स क्या होते हैं जो शायद आपको बहुत स्वीट लगे, बट आई एम श्योर अदर हाफ ऑफ दिस पॉपुलेशन इज और विल बी अग्रीइंग ऑन विथ मी ऑन दिस पार्ट, कि एट टाइम्स इट फील्स अ लिटिल अनॉइंग, थोड़ा सा छोटू सा, लाइक लीविंग, रीच, लेट, सो मच अपडेट, सो मच इन्फॉर्मेशन। अच्छा चलो थोड़ा सा ट्रैकिंग ऑफ करते, बट म्यूजिक ऑन रखते, ओनली ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
5: ओह हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, from timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis. Discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
8: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलिशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: बेटा 95% आए?
10: हाँ मम्मी.
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
5: मेरा?
9: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
5: वो
11: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
12: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
13: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
14: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
13: यस, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, aur ek delicious buffet jahan choices hi choices hain.
14: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
12: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy together.
15: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
16: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you're between 25 and 40 with experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
17: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: Stop, stop. Hey, hey, what are you guys doing? Where are you taking my car?
1: Pay back the loan, take back your...
2: ये electricity installment? तारा कुछ है ही नहीं ये सुन
0: में थोड़ी देर तो हो ही जाती है ना? So, घर से तो नहीं निकाल देंगे?

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: 17 minutes past 11 o'clock, you're listening to 104.9 FM Funisha Radio. और बताना है ये आपको कि AG Fintax के साथ अपने taxes और business finances को आप रख सकते हैं बिल्कुल sorted. Tax planning हो, accounting हो, payroll हो या फिर bookkeeping, अगर आप individually अपने लिए कुछ advices मांग रहे हैं या you're looking out for advices or you're looking out for some consultation about your business, then unki trusted professional support aapke liye hazir hai. agfintax.com is their website, and if you need to call them at 469-942-9888. That's 469-942-9888. And if you are a physician, aap ko agar lagta hai ki aap zarurat se zyada aap taxes पे कर रहे हैं, देन AG Fintax लेकर आ रहा है आपके लिए अ फ्री लाइव वेबिनार, जहां पे अनिल ग्रंथि खुद शेयर करेंगे टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ईयर एंड टैक्स स्ट्रेटजीज. एंड दैट वेबिनार is happening on Sunday, 11th October, 11 a.m. Central Time. That is Sunday, 11th of October. You can attend this webinar, which you can register at agfintax.com today. For all your financial and tax advices, trust AG Fintax.

आप भी अपना बना ले सकते हो फ्रॉम द ज्वेलरी कलेक्शन दैट श्री कृष्ण ज्वेलर्स इज ऑफरिंग राइट नाउ विद देयर स्टनिंग हैंडक्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड डायमंड्स पोलकी एंड मेनी मोर. दे आर लोकेटेड एन द मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. अगर आपको अपने अपना ज्वेलरी अपग्रेड करना हो, खुद को पैम्पर करना हो, या फिर इस फेस्टिव सीजन में चकाचांद लगानी हो, श्री कृष्ण ज्वेलर्स इज द वन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड. विजिट 13145 मेन स्ट्रीट सूट 220 इन फ्रिस्को और कॉल 430-231-1111. दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता. स्टे ट्यून्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ गपशप इज स्टिल देयर.

37 minutes past 11 o'clock, you're listening to 104.9 FM, Fanisha Radio. This is Rumita and this Gupshup Gali is talking about boundaries in relationship. And the boundary that I'm going to put a light on in this segment is like grandparents, parents or grandchildren. You know, parents ke saath boundaries ki conversation aur interesting ho jati hai, because jab aap अपने बच्चों की जब बात अपने बच्चों की हो, आपके फैमिलीज नेचुरली इन्वॉल्व्ड फील करती है. स्पेशली यंग किड्स के पेरेंट्स नोज दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आपका बच्चा पब्लिकली बहुत अपसेट हो गया है, पेरेंट्स एज अ पेरेंट यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन वेल, बट सडनली पेरेंटिंग एक लाइव मैच बन जाती है एंड देर आर एक्सपर्ट्स इन द गैलरी हु आर ऑलवेज रेडी टू गिव यू एडवाइसेस एंड माइंड यू फ्रॉम द गैलरी इटसेल्फ. यू नो, स्क्रीन टाइम से लेकर फूड, डिसिप्लिन, स्लीप, हर चीज पर आपको एडवाइसेस मिल सकती है. नॉट सेइंग दैट एडवाइस इज गुड और बैड और एनीथिंग, एंड ऑफकोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड फैमिली का एक्सपीरियंस बहुत ही वैल्यूबल है, बट आई थिंक बाउंड्री यहीं होनी चाहिए. एडवाइसेस और फाइनल डिसीजन में डिफरेंसेस होनी चाहिए. यू कैन लिसन, कंसिडर इट, अप्रिशिएट द कंसर्न, बट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड अल्टीमेटली जो पेरेंट्स डे बाई डे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं, फाइनल पेरेंटिंग कॉल भी उनकी होनी चाहिए. नहीं, दिस इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज. सो DFW पेरेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, फैमिली एडवाइसेस हेल्पफुल लगती है या कभी कभी गैलरी थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है? समझे नहीं समझे, चलो गाना सुन लो, एंजॉय कर लो.

पिछले 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक आपके साथ ही तो है और केयर कर रहे हैं आपके और हमारी कम्युनिटी को. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो. दिस इज गपशप गली विद मी रिमिता. एंड जैसे कि मैं कह रही थी, टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक इज नाउ लोकेटेड एट अ सेकेंड लोकेशन विद दिस नेम लनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाई डॉक्टर मनदीप आचार्या. या लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स यू द प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, और सिर्फ आपके medical सुविधाओं के लिए नहीं, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा pamper करना चाहो, then they too have this Himalayan med spa services and everything all under one roof. 7 days a week खुली है इनकी services, सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक. You can walk in anytime and you do not need any appointment. Lanoxy Medical, which is located in Frisco.

यू नो, बाउंड्रीज की बात करते हुए एक चीज मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, जैसे ना बोलने के बाद जो गिल्ट आता है. आपने कुछ गलत नहीं किया, किसी से बुरी तरह से बर्ताव नहीं किया, फिर भी अंदर से लगता है यार शायद मान जाना चाहिए था, स्पेशली फैमिली के साथ. बिकॉज अगर लोग आपके हाँ से यूज्ड टू है, तो आपका फर्स्ट ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है. और सिर्फ उनके लिए नहीं, ये आपके लिए भी होता है. बट मे बी गिल्ट का मतलब ये नहीं है कि बाउंड्री गलत थी. समटाइम इट्स सिंपली मीन्स आप एक पुरानी हैबिट चेंज कर रहे हो. एंड आई थिंक दैट रियल चैलेंज पहली बार ना बोलने में बिल्कुल नहीं है. द रियल चैलेंज इज जब आप सेम बात तीसरी, चौथी, पांचवी बार भी अगर आपके सामने आए, आप बिना गुस्से से या गुस्सा किए बगैर सेम आंसर पर टिके रहो या टिक पाओ. बिकॉज सामने वाला डिसअपॉइंटेड हो सकता है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट डिसअपॉइंटमेंट वेरी एविडेंट बिकॉज you know how people are. But without immediately changing your decision, if you stand by your decision, that is the real challenge I'm talking about. So aapke liye which is the most harder part, na bolna ya fir na bolne ke baad guilt feel na karna? Studio ka number is 972-235-5555. This is Gupshup Gali with me, Ramita.

9 minutes past 12 o'clock, you're listening to 104.9 FM Funny Sha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. And Gup Shup Gali, mein, we are in our final last segment today. रिलेशनशिप्स की बात हो रही है आज ट्यूसडे मॉर्निंग, और मुझे लगता है रिलेशनशिप्स में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, वो ये कि कोई इंसान एग्जैक्टली कब आपका अपना बन जाता है. बिकॉज यूजुअली कोई ड्रामेटिक मोमेंट तो होता है नहीं, बिकॉज यू नो दैट थिंग ऑफ या ये मेरा बंदा है या बंदी है, बस धीरे धीरे फॉर्मेलिटीज डिसअपियर हो जाती है. लाइक पहले उनके घर जाओ तो पूछते हो कि पानी मिलेगा, फिर थोड़े टाइम बाद यू नो एग्जैक्टली वेयर द फ्रिज इज एंड व्हाट यू डू. पहले फोन करने से पहले यू जस्ट टेक्स्ट देम फॉर्मली कि आर यू फ्री, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक. फिर एक स्टेज आता है कि वे यू जस्ट कॉल एंड रेंट आउट योर फीलिंग्स बिना हेलो बोले हुए भी. पहले उनके सामने प्रॉपरली रेडी होके आप जाते हो, यू नो फिट फाट होके, एंड लेटर मेसी हेयर, वही आपका पुराना घर का टी शर्ट और टेरिबल मूड भी चलेगा. सब कुछ एक्सेप्टेड है, एंड आई थिंक दैट्स सच एन अंडर रेटेड साइन ऑफ क्लोजनेस. समटाइम्स ये अपना वो नहीं होता जिसके साथ आपकी सबसे ज़्यादा इंस्टा में पोस्ट्स है या स्टोरीज डालते हो आप टैग वैग करके. इट्स द पर्सन जिसके सामने आपको कॉन्स्टेंटली प्रेजेंटेबल, इंटरेस्टिंग, फनी या सॉर्टेड बनने की जरूरत नहीं पड़ती यार. इवन द साइलेंस चेंजेस एट टाइम्स. सो DFW, थिंक अबाउट योर पर्सन, वो दोस्त, वो सिबलिंग, वो कजन, वो पार्टनर या कोई भी. आपको कब रियलाइज हुआ कि हाँ, इसके साथ अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो अपना है बॉस.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
2: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
3: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
2: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
3: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में? सब संभालेंगे?
3: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: ये तारा वो तारा हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
9: यार, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है।
3: कितनी लंबी लिस्ट है?
9: बस 2 pages. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी।
3: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL वर्ल्ड वाइड है ना। इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं। पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है।
10: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL वर्ल्ड वाइड, शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड। विजिट SFLWorldwide.com।
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया।
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया।
12: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
0: Visit www.senadainc.com today.
14: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.
0: Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
15: Non-stop entertainment, Fun Asia 104.9 FM पे आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, भागते दौड़ते स्टूडियो में पहुंचे हैं। पता नहीं कहां से आज ट्रैफिक आ गई। ट्रैफिक ऐसे मिलती नहीं है इस समय पर, बट यस, अगर आप अभी फिलहाल 121 से मुड़ रहे हैं टुवर्ड्स मैकिनी रैंच, यू विल सम फेस सम स्लो ट्रैफिक मे बी। सो यस, मैं भी भागते भागते दौड़ते दौड़ते टाइम पे पहुंच ही गई आप लोगों के साथ शो करने के लिए। और क्योंकि दौड़ते भागते स्टूडियो में पहुंची हूं, तो पहले सांसों को इकट्ठा करती हूं और आपको एक गाना सुनाती हूं, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ट्रैक, ताकि मैं अपनी सांसें बटोर लूं और फिर आपके साथ अपना शो शुरू करें। मंगलवार घड़ी में बज रहे हैं 12:35, आपकी होस्ट आयुषी आपके साथ आ गई है आपको कुछ प्यारे खूबसूरत गाने सुनाने के लिए।

Here was this beautiful track from the movie Simba. तो भाई चलिए, मैंने अपनी सांसों को वापस इकट्ठा कर लिया है और आपकी होस्ट आयुषी फनेशा 104.9 FM पे आपके साथ है, आपको एंटरटेन करने के लिए. आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा यार, कई बार सिचुएशन में जहाँ पे बिल्कुल समय पे पहुँचना होता है और आप हो जाते हैं लेट, और दौड़ते भागते सांसों को इकट्ठा करते हुए कोई मीटिंग या प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है. हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है? ऑब्वियसली हुआ होगा. हर कोई कहाँ एकदम बिल्कुल टाइम पे परफेक्टली हर दिन पहुँच सकता है. मेरा पति पहुंच सकता है. क्या आपके भी पति देव वैसे ही है, टाइम के पाबंद? मतलब नाश्ता छोड़ना पड़े, खाना छोड़ना पड़े, ऑफिस का काम छोड़ना पड़े, लेकिन जिस दिन जहाँ पे जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट है उसी टाइम पे वो पहुंचते हैं? या ऐसा कोई है, या आपकी बीवी ऐसी है, दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर शायद ऐसा होता ही है, एक बिल्कुल टाइम का पाबंद और एक समय को हल्के में लेने वाला. तो हमारी जोड़ी ऐसी है कि एक आदमी लेता है बिल्कुल टाइम को सीरियसली, और हम हैं जो चलते हैं ठीक है हो जाएगा वाले मोड में, बिकॉज हमको लगता है ना इससे लाइफ में मज़ा बना रहता है. क्योंकि अगर दोनों के दोनों ऐसे हो जाएं तो फिर लाइफ हो जाएगी बड़ी बोरिंग. और लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चुलबुला और एक शांत दोनों होना चाहिए. तो आपके हिस्से वाला जो है, आपका हिस्सेदार, आपका पार्टनर, वो कैसा है? अगर चुलबुला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चुलबुले हैं तो सोने पे सुहागा है. क्योंकि जो भी चुलबुला होता है ना, वही घर के एनवायरनमेंट को एकदम हमेशा खिलखिलाता और मज़ेदार बना के रखता है. ये मेरा मानना है. आपका क्या मानना है? स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके बताइए, 972-235-5555. आपकी होस्ट आयुषी आपके लिए अगला गाना लेकर के आ रही है, और साथ ही आपके कॉल का इंतज़ार भी कर रही है.

सो हियर वाज दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. और पहले आपको बता दें कि आपके सपनों का घर ना आपके बहुत करीब है, आप बस सोच नहीं रहे हो. अगर सोचोगे तो बस बहुत ही करीब है, क्योंकि 1998 से ड्रीम होम मॉर्गेज ने बहुत सारे परिवार को नेशन वाइड हेल्प की है पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस के साथ बाइंग के लिए और रीफिनेंसिंग के लिए. आप इनको कॉल कर सकते हैं 9722455626 पर. dreamhomemortgage.com पे जाइए और बाकी डिटेल्स देखिए. ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स कम ट्रू. और हमारे पास अभी आशा जी का फोन आया था और उन्होंने बताया कि भाई उनके मियाँ कभी कभार हंस लेते हैं और वही है जो घर में चुलबुलापन फैलाते रहती है, और नहीं तो फिर बैठ के हमारा रेडियो सुनते रहती हैं क्योंकि हमारी बातें उनको वो चुलबुलेपन का एहसास दिलाती हैं. हमारे आरजेस जो हैं वो इतनी सारी बातें बताते हैं, करते हैं कि बस रेडियो ही साथी है दोनों पति पत्नी का. दैट वाज रियली स्वीट ऑफ हर टेकिंग यू टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आशा जी के लिए.

Another beautiful track from the movie My Name Is Khan. शाहरुख खान और काजोल है इसमें. और भाई ये वाली जो बात है ना, एक चुलबुला और एक बिल्कुल शांत रहने वाला, ऐसी जोड़ियां हमेशा बनती हैं. और उनमें से ही एक जोड़ी का अभी कॉल आया था मेरे पास, मेरे जानने वाले हैं. और जो भाई पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली हैं. इतनी चुलबुली हैं कि वो घर से ज़्यादा ऑफिस में चारों तरफ रौनक फैलाए रहती हैं. और पतिदेव बिल्कुल समय के पाबंद, ऐसे पाबंद कि आपको कई जगह तो आधे घंटे पहले पहुंचा देंगे. ऐसी जोड़ियां भगवान चुन के बनाता है कि एक जो होता है वो चुन चुन चुन चुन चुन पूरे दिन घर में करता रहता है, और एक जो है कभी कभार मुस्कुरा देता है. और मुस्कुराता भी ऐसा है जैसे लगता है कि भाई हम पे ही एहसान कर दिया. ऐसी ही एक प्यारी जोड़ी का भी कॉल आया था, मुझे दीपक ने कॉल किया. और वो एक उन्होंने ये बात बताई कि मेरी वाली तो ऐसी ही है, आप जानते हो कि कहीं भी जाने के पहले उसकी चैं चैं चौचौ शुरू रहती है, और मैं हूँ कि आधे घंटे पहले ही उसको जगह पे पहुँचा देता हूँ. तो ऐसी प्यारी सी जोड़ी के लिए और ऐसे चुलबुले से इंसान के लिए अगला गाना डेडिकेट कर रही है आपके होस्ट आयुषी. सुनिए इस प्यारे से गाने को. ये गाना मेघा के लिए है, दीपक की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से. आप दोनों के लिए ये प्यारा सा गाना.

ये वॉज दिस ब्यूटिफुल ट्रैक और ड्रामा क्वींस जितनी हैं उतनी जितनी ड्रामा क्वींस हैं आसपास हमारे उन सबके लिए है, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, मैं भी ड्रामा क्वीन हूँ यार, और वही होना बेटर है, कभी कभी मुस्कुराने से रोज मुस्कुराना ज्यादा अच्छा है। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप भी ऐसे चुलबुले पार्टनर्स और यू नो शांत पार्टनर वाली जोड़ी हैं तो प्लीज कॉल करिए, गाना डेडिकेट करिए। आपकी होस्ट आयुषी इंतजार कर रही है आपके कॉल्स का, स्टूडियो का नंबर है 9722355555। कॉल करके अपने वाले के लिए ना गाना डेडिकेट करिए, इस बार देखते हैं कोई पत्नी करती है क्या अपने शांत पति के लिए कोई गाना डेडिकेट। तो जल्दी से कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पे।

We're heading towards a very short commercial break. Break पे जाके वापस आते हैं और अपने अगले segment को आप सबके साथ शुरू करेंगे. आप सुन रहे हैं Fun Asia 104.9 FM, अपनी host आयुषी के साथ.

0: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज.
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
4: दिल की बात किससे कहें?
5: पंडित गुरुदेव से. 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ पंडित गुरुदेव करते हैं कुंडली रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस, पाम रीडिंग और फेस रीडिंग, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार, शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव, आइए अपनी बात कहिए.
3: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी.
6: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
3: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
2: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
5: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
2: Barista House, richness of biryani bliss.
7: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
8: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब, 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
10: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियरबाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
11: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
12: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
13: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग.
14: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं फनीशा 104.9 FM. आपके होस्ट आयुषी के साथ फनीशा, नेशन का फन स्टेशन. और इसको फनी बनाने के लिए आपके होस्ट यहाँ पर आ जाते हैं और कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की. और आज हम भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं आपको थोड़ा हंसाने की, आपसे थोड़ी फरमाइशें लेने की और आपको कुछ अच्छे गाने सुनाने की. लेकिन हमारे इस सेगमेंट में अब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ ऐसी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं. एक्चुअली मैं सवाल पूछती हूँ आपसे, आपको याद है वो दौर जब फिल्में आती थी और फिल्में पर्दे पे लगती थी, कुछ दिन चलती थी, सुपर डुपर हिट जब वो क्लेम हो जाती थी, उसके बाद सडनली आपको पता लगता था कि इस मूवी में एक और गाना ऐड हो गया है, या फिर आप कैसेट में आपके होते थे 12 गाने और आपको मूवी में सिर्फ 11 ही या 10 ही गाने दिखते थे, बाकी 2 गाने होते ही नहीं थे। ऐसा एक टाइम था 80 से लेकर लेट 90s तक का, जब फिल्मों में कुछ गाने बाद में जोड़े जाते थे। अब इसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहें, या फिर क्यूरियोसिटी बढ़ाने का तरीका कहें, या फिर मूवी इतनी लंबी हो जाती थी कि मेकर्स इसको छोटा कर देते थे वो गाना निकाल करके, पर एक गाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। कुछ सीन्स भी डिलीट हो जाते थे जो कि बाद में ऐड किए जाते थे, और मूवीज़ को प्रोजेक्ट किया जाता था कि अब अनकट सीन्स के साथ ये फिल्म आई है, या अनकट गानों के साथ फिर से थिएटर में आ गई है ये अलग अलग फिल्में। इस तरह का आई थिंक ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता था, मूवीज़ के चलने का इंतज़ार होता था। लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें गाने बाद में ऐड हुए हैं, और ऐसी ही फिल्मों के आज गाने हम आपको सुनाने वाले हैं, वो गाने जो फिल्मों में बाद में ऐड हुए। अगर आप बॉलीवुड के फ़ैन हैं और आपको भी ऐसे कोई गाने पता है जो कि मूवीज़ में बाद में ऐड हुए हैं, तो ज़रूर कॉल करिएगा अपनी होस्ट को 972-235-5555 पे और बताइए मुझे। सो बेसिकली होता ये था कि एक ट्रेंड था, मार्केटिंग ट्रेंड बन गया था और कुछ नहीं। मूवी के 50 दिन, 75 दिन या 100 दिन हो जाने के बाद दैट एडिशनल सॉन्ग वॉज इंसर्टेड इन द रनिंग प्रिंट एंड देन प्रमोटेड द फिल्म अगेन विद अ न्यू सॉन्ग अट्रैक्शन। और ऐसी ही एक फिल्म का गाना मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, फिल्म का नाम आपको बताना है, देखते हैं कितने टैलेंटेड हैं मेरे लिसनर्स। 1988 में आई एक फिल्म जिसमें थे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, और फिल्म हो गई थी बहुत फेमस, चल गई थी जोर शोर से, 100 दिन बीत गए थे और मेकर्स ने फिर ये गाना ऐड किया, और ये गाना अनुराधा पौडवाल जी और सुदेश भोसले जी ने गाया था, म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सो देखते हैं कौन कौन पहचानता है कि ये फिल्म कौन सी है जिसमें ये गाना बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, तो प्ले कर रही हूँ ये गाना आप लोगों के लिए।

So this was Anil Kapoor and Madhuri Dixit in the film Tezab. और Himanshu Patel जी, Viresh जी and Latika जी ने सही जवाब दिया है. तो आज हम कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं, ऐसे फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें गाने बाद में ऐड किए गए हैं, या तो उनको बाद में रीशूट किया गया है और उनको ऐड किया गया है, या फिर वो शूट होकर के हटा दिए गए थे. बट सपोजिटली 80s और 90s में ये ट्रेंड था जहां पर ये गाने बाद में मूवी के सुपर डुपर हिट 100 दिन के बाद जब उनका पता लगता था कि वो हिट हो गई है, तो ऑडियंस को फिर से थिएटर्स रिविजिट कराने का ये एक तरीका होता था कि आप आइए और अपने फेवरेट एक्टर्स को इस नए गाने में देखिए. एंड इट यूज टू वर्क. फिल्म और चलती थी और लोग वापस से देखने जाते थे, और देखा है जिन्होंने, वो भी सिर्फ एक गाने के लिए वापस जाया करते थे. तो ऐसे ही कुछ फिल्म और फिल्मों के गाने आज मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, जहाँ पर हम बाद में एडिड गानों को आपको सुना रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कौन सी फिल्म के गाने थे. और हमेशा मुझे ना ऐसे क्यूरियोसिटी हुआ करती थी जब भी कोई फिल्म आती थी, उसका कैसेट आता था, गाने तो यार इतने सारे हैं पर ये दो गाने शूट नहीं हुए, मतलब फिल्म में नहीं दिखे. अगर दिखते तो कैसा होता. एंड सडनली आफ्टर अ फ्यू डेज दैट सॉन्ग यूज टू गेट रिलीज्ड, और उसको देखने के लिए फिर से या तो घर पे कैसेट ला के, या फिर हॉल में तो उस समय उतना नहीं जाना होता था, बट फिर से मूवी कैसेट ला के VCR पे लगा के वो फिल्में री रिलीज्ड देखी जाती थी. तो भाई मार्केटिंग की अच्छी स्ट्रैटेजी थी, कैसेट्स भी दोबारा सेल होते थे और थिएटर्स में भी मूवी दोबारा से लगती थी सिर्फ और सिर्फ उसे एक गाने के लिए. ऐसी ही एक और फिल्म है जिसका अभी मैं गाना प्ले करने वाली हूँ. एंड दिस मूवी ऑल्सो कम्प्लीटेड 100-day रन एंड द प्रोड्यूसर्स शॉट दिस सॉन्ग इन एडेड टू द मूवी. इट फीचर्ड आमिर खान एंड माधुरी दीक्षित एंड वाज संग बाय अनुराधा पौडवाल जी एंड उदित नारायण जी. द पर्पस वॉज क्वाइट क्लियर, रिपीट ऑडियंस, कुछ नया देखने मिलेगा. और माधुरी और आमिर फिर से एक बार, और ये जो फिल्म थी ना, इसका ऑलरेडी जो गाने थे वो हिट थे, सारे के सारे हिट सॉन्ग्स एंड ब्यूटीफुल नंबर, मूवी भी सुपर डुपर हिट जा रही थी. और उसके बाद 100 दिन बाद एक और गाना, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, लोग पहुंच गए थिएटर में और ये गाना उन्होंने फिर से इंजॉय किया. 1990 की फिल्म है, बताइए कौन सी फिल्म है ये जिसमें ये गाना री एड हुआ.

दिल फिल्म का ये गाना 1990 की फिल्म आमिर और माधुरी, मतलब कि राजा और मधु की प्रेम कहानी है, जिसको पूरे भारत ने दिल दे दिया था उस टाइम पर। और ये दो यंग लवर्स जिनके पेरेंट्स उनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, मतलब बिल्कुल वैसा वाला टाइम ना जब 90s में मोस्टली ऐसा होता था, दो प्यार करने वालों के अगेंस्ट उनका परिवार। फिल्म की लव स्टोरी कॉमेडी और स्पेशली मुझे नींद ना आए और हम प्यार करने वाले जैसे सॉन्ग से घर घर पॉपुलर हो चुका था और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। इसके बाद एक और गाना ऐड करना, मतलब जो आमिर और माधुरी के फैंस थे, जो इस फिल्म की स्टोरी को इतना पसंद कर रहे थे, उनको दोबारा थिएटर में बुलाने का सबसे आसान तरीका था कि भाई आओ और इनके एक और मज़ेदार गाने को देखो। और दिल में आमिर खान के करियर को मेजर टर्निंग पॉइंट दी थी और माधुरी दीक्षित के साथ उनकी पेयरिंग ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि दोनों बॉलीवुड के मेमोरेबल ऑन स्क्रीन जोड़ीज में से गिने जाने लगे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फिल्म ने मेट्रोज में नहीं छोटे शहरों पे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स दिया था। यानी राजा और मधु की ये जो प्रेम कहानी थी, पूरे इंडिया की लव स्टोरी बन गई थी। सो दिल प्रूव्ड वन थिंग, जब केमिस्ट्री जेन्युइन हो तो लैंग्वेज, सिटी या जनरेशन, लव स्टोरी सबकी बन जाती है वो। और इसी यही कारण था कि एक और गाने को इस टाइम पे रिलीज किया गया था, ताकि जो छोटे शहर बड़े शहर सबने जिस फिल्म को देखा है वो उसको देखें, दोबारा जा करके देखें और फिल्म की इनकम बढ़ती जाए। मजेदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी उस समय के हिसाब से। तो अगले गाने और अगली फिल्म की तरह आपको लेकर के चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इफ यू आर इंजर्ड इन अ कार ट्रक और स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, फोकस ऑन हीलिंग व्हाइल अटर्नी ओमार फाइट्स फॉर यू। यू पे नथिंग अनलेस ही विंस। यू कैन कॉल हिम ऑन 4693005046 और विजिट attorneyomar.com। तो चलिए, इस जानकारी के बाद आपको अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं। ये भी 90s की एक बहुत ही क्या बोलें, सुपर डुपर हिट फिल्म थी। ऑब्वियसली सुपर जो ब्लॉकबस्टर कहते हैं वैसी फिल्म थी। आमिर है इसमें भी, इनके साथ पूजा भट्ट हैं और फिल्म बहुत अच्छी सक्सेसफुल चल रही थी। बट इस बार ऐसा था ना कि ये वाला गाना ऑलरेडी जो है वो कैसेट में था। स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज किया गया, कैसेट वर्जन में था और इसको रीशूट नहीं किया गया था। ये गाना जो है वो फिल्म में ऑलरेडी था, पर मेकर्स चोज नॉट टू पुट दिस सॉन्ग इन द मूवी। एंड लेटर वही 100 days का पीरियड और उसके बाद से फिर से इस गाने को इस फिल्म में ऐड किया गया। आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म, नदीम श्रवण का म्यूजिक, बोल है समीर के, सिंगर्स हैं अनुराधा पौडवाल, बाबुल मेहता और अभिजीत। सो हियर्स दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल है कि मानता नहीं।

0: आमिर खान और पूजा भट्ट की क्यूट से लव स्टोरी जो कि हॉलीवुड की एक 1934 की क्लासिक से इंस्पायर्ड थी, इट हैपेंड वन नाइट, ये थी वो फिल्म जिससे फिल्म इंस्पायर होकर के बनी थी और 1991 में रिलीज हुई। ये 90s की रोमांस लवर्स की फेवरेट बन गई थी। आमिर और पूजा की केमिस्ट्री और नदीम श्रवण का अनफॉरगेटेबल म्यूजिक और एक रनअवे गर्ल की रोड ट्रिप लव स्टोरी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन था जो 90s में लोग देखना चाह रहे थे, कुछ अलग कुछ हटके। और इंटरेस्टिंग सीक्रेट, पूजा भट्ट ने रिसेंटली रिवील किया था ना, शूटिंग के दौरान उनके और आमिर के बीच एक स्पार्क जरूर था, ऑल्दो इट नेवर बिकेम अ रिलेशनशिप। तो ये एक गॉसिप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। म्यूजिक ट्रिविया का भी कमाल है, कभी कमाल का है। फिल्म के कुछ सॉन्ग्स पहले बाबला मेहता की वॉइस में रिलीज हुए थे इस फिल्म में और बाद में कुमार सानू की वॉइस यूज की गई थी। तो दिल है कि मानता नहीं का जो टाइटल ट्रैक है वो हम सब ने सुना है, हम लोगों को यू नो बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो गाना। इस फिल्म के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं है बट बॉलीवुड की, हॉलीवुड की इंस्पिरेशन, आई एम सॉरी। सो प्ले चेंजिंग ऑफ प्लेबैक वॉइसेस और एक लिटिल ऑफ स्क्रीन स्पार्क की कहानी भी है इस फिल्म के साथ। दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, फिर और फिल्मों के बारे में बात करेंगे।
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
6: कीमा पराठा।
7: मम्मी ऑमलेट पराठा।
8: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
5: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
9: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड, विजिट सिग्नेचर क्विजीन डॉट।
10: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
10: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
11: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और visit astrologerishwar.com.
12: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
15: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन। Available. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
16: Agar main kahun
4: तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 300 है और ब्लड प्रेशर 160, तो क्या कहोगे?
5: क्या?
6: Wake up!
16: ड्रीम में रियलिटी चेक अक्सर डर बीमारी का नहीं उसके पकड़े जाने का होता है, लेकिन व्हाट इफ में मत अटके, एनुअल चेकअप करवाइए।
17: विजिट एलन इंटरनल मेडिसिन एंड ट्रस्ट डॉक्टर वनीता एंड हर टीम फॉर एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग्स एंड वेट मैनेजमेंट। न्यू पेशेंट्स विद सेम डे अपॉइंटमेंट्स वेलकम। कॉल 4696499995 और विजिट aimallen.com।
18: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Funasia 104.9 FM.
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं फनीशिया 104.9 FM और आपकी होस्ट आयुषी स्टूडियो में आपको सुना रही है कुछ बहुत प्यारे और खूबसूरत बॉलीवुड गाने जो कि बाद में जुड़े हैं फिल्मों से, पहले फिल्में देख ली और उसके बाद ये गाने ऐड किए गए। तो आज हम ऐसे ही कुछ गाने आपके लिए लेकर के आए हैं, कुछ ऐसी फिल्में लेकर के आए हैं, थोड़ी आप मेरी मदद कर रहे हो, कुछ गाने मैंने ढूंढ के रखे हैं। अगर मैं कुछ गानों को मिस कर रही हूँ तो ज़रूर कॉल करके बताइए कि कोई ऐसी फिल्म जिसमें आप जानते हों कि मूवी रिलीज होने के बाद, सुपर डुपर हिट होने के बाद, ब्लॉकबस्टर बनने के बाद उसमें कोई गाना इंसर्ट किया गया हो और उसके बाद उसको री रिलीज या फिर री एडवर्टाइज किया गया हो, तो ज़रूर कॉल करके बताएं मुझे। मेरे पास तो कुछ गानों की लिस्ट है और इस अगले गाने की तरफ मैं जा रही हूँ जो कि फिल्म 1991 में हुई थी। ये स्ट्रैटेजी इनिशियली ना एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आई थी और गानों को रीशूट किया जाता था पहले, लेकिन अब इस टाइम पे 90s में क्या होने लगा कि गानों को रीशॉट नहीं किया गया था। मेकर्स दोबारा शूटिंग पे पैसा नहीं खर्चा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सोची समझी साजिश की और गानों को पहले ही शूट कर लिया मूवी के दौरान, लेकिन फिल्म में उसको ऐड नहीं किया। कैसेट में वो गाना रिलीज होता था लेकिन फिल्मों में हमें दिखता नहीं था। क्यूरियोसिटी को क्रिएट किया जाता था और बढ़ाया जाता था कम से कम 100 दिन तक, जब तक फिल्म सुपरहिट घोषित नहीं हो जाती थी। ऐसी ही एक फिल्म जो 1991 में आई थी, जो इस एक्टर की पहली फिल्म थी और उनका आइकॉनिक जो उनमें क्या बोलते हैं, जो हीरो की एंट्री हुई थी ना, जो इनका इंट्रोडक्शन हुआ था, वो बड़ा ही आइकॉनिक स्टाइल है, आज तक उसको कॉपी किया जाता है यार। ऑलमोस्ट कितने 25 साल हो गए इस चीज़ को, बट दैट एंट्री इज स्टिल बीइंग कॉपीड, जहाँ पर 2 बाइक स्प्लिट स्टंट होता था और फिर हीरो की एंट्री हुई थी, तो उसी फिल्म में ये गाना ऐड हुआ। इस फिल्म में मैं ये नहीं बताऊंगी एक्टर कौन है, वो आप मुझे बताने वाले हो, लेकिन इसका म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिया था और गाना गाया है अनुराधा पौडवाल जी ने कुमार सानू के साथ। बहुत ही अच्छा प्यारा प्यारी फिल्म थी, हिट हुई और इसके बारे में और बात करेंगे। पहले आप बताइए ये कौन सी फिल्म है जहां पर 2 बाइक स्प्लिट स्टंट हुआ और हीरो की एंट्री आज तक कॉपी की जा रही है। उसी फिल्म का ये गाना जो बाद में ऐड किया गया आप लोगों के लिए।

फूल और कांटे, अजय देवगन की पहली फिल्म, उसका था ये गाना जो हम आपके लिए लेके आए थे. और सोनिया एंड अपर्णा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका. तो अगले गाने की तरफ, अगली फिल्म की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, ऑफरिंग ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, बुक कीपिंग एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. कॉल 469-942-9888 और विजिट AGFintax.com and join AG Fintax free live webinar and discover tax saving opportunities, retirement planning, smart investments and three and year-end tax strategies with Anil Grandhi. Sunday, October 11th at 11 a.m. Central Time. Register today at agfintax.com and secure your spot. So please miss mat kariye. Agar aapko apne tax saving opportunities ke baare mein janna hai, retirement planning hai ya fir स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली ज्वाइन दिस वेबिनार विच इज ऑन संडे अक्टूबर 11th एट 11 a.m. सेंट्रल टाइम. सो यू कैन रजिस्टर एट agfintax.com. और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं. ये जो गाना था ये अजय देवगन की डेब्यू फिल्म से था, फूल और कांटे, 1991 में आई थी. और भैया इस फिल्म की एंट्री ने ही अजय को स्टार बना दिया था. अजय वॉज एक्चुअली स्टिल इन कॉलेज एंड वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर when director Kuku Kohli pushed him to take the lead. He apparently wasn't even keen on becoming an actor at that point. And that entry, Ajay, split wala stunt karke jab bike pe unhone entry mari, no VFX, no body double, he performed the stunt himself and instantly became one of the Bollywood's most iconic introductions. Aur aaj bhi hum dekhte hain kitne sare TV shows mein, OTT platforms pe stunt ko copy kiya jata hai. तो इस फिल्म के लिए ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अक्षय कुमार जो है ही वॉज इनिशियली कंसिडर्ड फॉर द फिल्म, लेकिन बाद में अजय देवगन ने उनकी जगह ले ली. और दोनों एक्टर्स इसी दौरान इंडस्ट्री में आए थे और दोनों ही बहुत ह्यूज एक्शन स्टार्स बने. लेकिन 1991 में अजय थे जो कि जिन्होंने ये एंट्री मारी एंड ही केम विद द बैंग एंड बिकेम ऑडियंसेस फेवरेट. द फिल्म बिकेम अ ब्लॉकबस्टर एंड अजय वॉन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू. एंड जस्ट लाइक दैट बॉलीवुड हैड फाउंड हिज इट्स न्यू एक्शन हीरो. फूल और कांटे जो है उन्हें अजय देवगन का वो आइकॉनिक एंट्री दिया और एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर भी दिया. तो ऐसे ही कुछ और प्यारे गाने फिल्म्स आपके लिए लेकर के आई है आपकी होस्ट आयुषी. आप सुन रहे हैं फनीशिया 104.9 एफएम पे. और भाई मेरे लिसनर्स मेरा साथ दे रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी फिल्में बताई हैं जो कि ऑलरेडी मेरी लिस्ट में एडिड थी. लेकिन अब हम बात करते हैं अगले गाने की. फूल और कांटे के बाद अगला गाना था, अगली फिल्म थी जिसमें गाने को इस तरह से ऐड किया गया, अक्षय कुमार की फिल्म जो कि 1992 में आई थी. तो अब मूवी का नाम आप बताना पसंद करेंगे या मैं बताऊं? चलिए आपसे ही पूछते हैं और इस बार ना जो सही जवाब देगा उसको हम देंगे आज का गिव अवे. गिव अवे है फन पिज्जा किचन की तरफ से उनका नया मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा एंड फुल विच इज अ फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा. ट्राई द फिएस्टा वेजी फायरली पोलो लोको Seafood packs, Sonor Cameron and more. Answer today's simple question for a chance to win $10 gift card. और सवाल ये है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है. मैंने हीरो बता दिया है ऑलरेडी आपको, 1992 में आई थी ये फिल्म. ये गाना बाद में इस फिल्म में ऐड हुआ था. तो जल्दी से फोन उठाइए और स्टूडियो के नंबर पे कॉल करिए. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555 और लेके जाइए आज का गिफ्ट कार्ड.

अक्षय कुमार की ये फिल्म जिसमें गाना फिर से जोड़ा गया था, उस फिल्म का नाम है खिलाड़ी। और बहुत सारे कॉल्स आए मेरे पास, लेकिन सबसे पहले कॉलर थे राजेश रपिल्ले जी। तो जोरदार तालियां, उनको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से ये $10 का गिफ्ट कार्ड। और राजेश जी के साथ साथ रूपल और अभी कभी कॉल आया और उन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो खिलाड़ी ऑलरेडी थिएटर्स में चल रही थी और बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही थी जब थिएटर्स ने जब मेकर्स ने डिसाइड किया कि ये वाला गाना ना फिर से फिल्म में ऐड करते हैं। और ये गाना रीशूट नहीं हुआ था, इसे फिल्म से एडिट कर दिया गया था। बिकॉज ना मेकर्स के हिसाब से ये उस समय फिल्म का पेस नहीं मेंटेन कर पा रहा था, रन टाइम थोड़ा बढ़ रहा था, इसलिए इसको निकाल दिया गया था। लेकिन 3 महीने बाद फिर से ये गाना ऐड किया गया, जो कि उदित नारायण, आशा भोसले और अभिजीत की आवाज़ में था। और यस, ये कॉम्बिनेशन, ये जो सिंगर्स का कॉम्बिनेशन था, ये भी मज़ेदार था। 3 लोग थे इस गाने में जो दिख रहे हैं हमें, आयशा जुल्का, अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी, एंड उनके साथ साहिबा भी थी एंड जॉनी लीवर भी थे। जतिन ललित ने बाद में ये रिकॉल किया कि आशा भोसले जी ने 3 गाने गाए हैं इसके साथ साथ। एंड खिलाड़ी वो फिल्म है जिसने अक्षय कुमार को मिस्टर खिलाड़ी का टाइटल दे दिया था, और उसके बाद से खिलाड़ी कुमार बन गए वो। और इतनी सारी खिलाड़ी वाली फिल्में की उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। बट यस, अक्षय यू नो स्टेप्ड इन एज द खिलाड़ी हीरो, एंड देन रेस्ट इज बॉलीवुड हिस्ट्री। एवरीबडी नोज कि उन्होंने कितनी सारी फिल्में की। पर ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग थी, 90s की वो फिल्म जिसमें सब कुछ था, कॉलेज की मस्ती, कॉलेज की दोस्ती, मज़े मज़े में किडनैपिंग सीन जो कि बन जाता है एक मिस्टीरियस डेथ एंड अ फुल ब्लोन मर्डर मिस्ट्री। सब कुछ था इसमें, रोमांस था, मस्ती थी, मजाक था और मर्डर मिस्ट्री भी थी। आई रिमेम्बर वॉचिंग दिस टीवी दिस मूवी ऑन टीवी, जी सिनेमा पर कितनी बार देखी थी ये फिल्म, अभी भी अच्छे से याद है मुझे। लेकिन खिलाड़ी वॉज द फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय वीनस, द म्यूजिक लेबल दैट लेटर बिकेम अ मेजर बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस। द फिल्म सक्सेस गेव वीनस अ ह्यूज लॉन्च पैड। और इसका वो गाना मेरा फेवरेट है यार, वादा रहा सनम। आई नो आई एम नॉट दैट सुरीली, बट यस, बहुत ही प्यारा गाना है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स। जतिन ललित का म्यूजिक था उसमें। एंड हाँ, बिगेस्ट ट्रिविया भी देती हूँ, खिलाड़ी वॉज अक्षय थर्ड रिलीज, बट इट वॉज द फिल्म दैट स्टैब्लिश्ड हिम एज एन एक्शन हीरो, गेव हिम द निक नेम दैट स्टेड हिम विथ हिम फॉर डेकेड्स। आज भी उनको खिलाड़ी कुमार के नाम से जाना जाता है, और 1992 के बाद उनका ये खिलाड़ी एरा शुरू हो गया था। तो अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, अगली फिल्म जो कि ऐसी ही थी, बाद में ऐड की गई। लेकिन उसके पहले थोड़ी जरूरी जानकारी दे दें, आपको बहुत ज़रूरी है। इट्स फॉर द बिजनेस ओनर्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी पीपल सी और क्लिक ऑन योर एड, इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल बिकम कस्टमर्स। मीट स्मार्ट रीच AI, अ फन एशिया नेटवर्क प्रोडक्ट दैट हेल्प्स यू रीच पोटेंशियल लोकल कस्टमर्स, इवन दोज विजिटिंग योर कॉम्पिटिटर्स अक्रॉस रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म, streaming TV and online ads. So then measure what truly matters, calls, bookings, offer redemptions and actual visits to your business. Visit smartreachai.us and turn local attention into customers. अगले गाने की बात करें, बहुत सारी फिल्में ऐसी हो गई थी जिन्होंने ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और अब हम धीरे धीरे 90 से 2000s में एंटर करने वाले हैं। लेकिन एक और फिल्म है जिसमें ये गाना बाद में ऐड किया गया था, और इस फिल्म में वेंकटेश और करिश्मा कपूर थे, आनंद मिलन का म्यूजिक था, समीर के बोल थे, और फिल्म का नाम है अनाड़ी। अनाड़ी इज अनदर फैसिनेटिंग एग्जांपल बिकॉज इट वाज वेंकटेश हु वाज अ बिग स्टार फ्रॉम द साउथ इंडियन सिनेमा, एंड इट वाज हिज बॉलीवुड डेब्यू जो उन्होंने की थी। एंड आफ्टर अनाड़ी बिकेम सक्सेसफुल, ये गाना इस फिल्म में ऐड कर दिया गया था, जो कि कुमार सानू और अलका जी ने गाया था। फिल्म गाने की तरफ आपको जल्दी से लेकर के चलते हैं। इस फिल्म के बहुत सारे प्यारे गाने थे जो हम लोगों ने देखे, और ये फिल्म भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था वेंकटेश को बॉलीवुड में। साउथ के तो स्टार थे ही वो, लेकिन जब उन्होंने पहली हिंदी फिल्म की तो वहाँ पर भी वो छा गए। तो अगला गाना ये रहा फिल्म अनाड़ी से।

0: So here was this beautiful track from the movie Anadi. Anadi में वेंकटेश और करिश्मा थे और इस भी गाने को बाद में ऐड किया गया था फिल्म की सक्सेस को देखते हुए. फिल्म अच्छी चल रही थी तो फिर से एक और गाना ऐड कर दिया गया. एंड नाउ इट्स वेरी क्लियर थे सारे गाने सुनने के बाद ना ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी. 100 दिन थिएटर में फिल्म चली और उसके बाद से एक नया गाना डाल के फिल्म को री रिलीज कर दो ताकि लोग फिर से देखने आ जाए. और ऐसे ही कुछ फिल्मों के गाने आपके लिए लेकर के आई हूँ, कुछ भूले बिसरे गीत. फनेशिया 104.9 FM पे आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को. ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके फिर कुछ और गाने सुनेंगे.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM KZMP 104.9 FM HD1 पायलट पॉइंट टेक्सास. साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2 सैंगर टेक्सास. पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन.
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax.
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
7: हेलो, तुम डेल्स में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में? सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: It's the time to clock out.
12: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
13: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज week 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
0: जहाँ तंदूर की आंच घर जैसी गर्माहट और अपनों का साथ सब एक ही मेज पर मिल जाए, अब वही पंजाब अपने दमदार स्वाद और दिल से की गई मेहमान नवाजी के साथ

0: पंजाब बाय पेज थ्री नाउ इन इरविन. स्वाद पंजाब का अंदाज पेज थ्री का.
1: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में. इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है. हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
2: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के.
1: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
2: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. तथास्तु.
3: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. इंडियन अटायर, फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन.
4: हेलो, मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
5: सर, बढ़िया है. 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स.
4: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
5: पता नहीं.
3: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं. इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट रीच AI, पावर्ड बाई रियल फुट ट्रैफिक एट्रीब्यूशन. विद स्मार्ट रीच AI, रीच लोकल कस्टमर्स, इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो, डिजिटल, स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो. मेजर कॉल्स, बुकिंग्स, रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स.
4: अब हुई ना स्मार्ट मार्केटिंग.
3: विजिट smartreachai.us. स्मार्ट रीच AI, टर्न अटेंशन इनटू कस्टमर्स.
6: स्मार्ट रीच AI, अ फन एशिया नेटवर्क प्रोडक्ट.
7: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो.
8: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. और डैलस की धड़कन आज आपके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है मेरे सवालों से, क्योंकि मैं जितने बार भी सवाल पूछती हूँ मुझे लगता है कि आपके कॉल्स आ रहे हैं. मतलब आप मेरे क्वेश्चंस को सुन के आपका कहीं ना कहीं दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आप फटाक से मुझे कॉल कर देते हो. और हम कुछ ऐसी फिल्मों की बात कर रहे थे पिछले एक घंटे से जहाँ पर फिल्मों में गाने बाद में ऐड किए गए हैं फिल्मों को और चलाने के लिए, उनका इनकम बढ़ाने के लिए और हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए गानों को फिर से ऐड करके री रिलीज किया गया था. तो मैंने बहुत सारी फिल्मों के बारे में बात की, पर अब हम 90s की उस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें ट्विस्ट आया था. फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, एक ऐसी पारिवारिक फिल्म जो कि राजश्री प्रोडक्शंस की तरफ से आई थी, रिलीज हुई, जिसने हर घर में और हर घर के हर उम्र के लोगों के दिल में अपनी बना ली थी. चाहे वो बड़े हो, बच्चे हो, जवान हो, मम्मी हो, पापा हो, चाची हो, भाभी हो, बुआ हो, सारे रिश्तों को इतना परफेक्ट दिखा के इतनी क्यूट सी फिल्म बनाई थी सूरज बड़जात्या ने कि इस फिल्म ने सबके मन में जगह बना ली थी. जब कैसेट आया तो कैसेट में 14 गाने थे. और फिल्म जब रिलीज हुई, जो कि 5 अगस्त 1994 में रिलीज हुई, और उस फिल्म को जब लोग देखने गए तो सबका एक ही रिएक्शन आया कि भैया फिल्म बहुत लंबी है, क्योंकि हमें तो आदत थी नहीं थिएटर्स में बैठ के 3.5 घंटे की फिल्म देखने की. तो भाई इसमें ना सबसे अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट हुआ बॉलीवुड में. आप सोच सकते हैं कि फिल्म को छोटा किया गया हो रिलीज होने के बाद. जी हाँ, तो हम आपके हैं कौन में एक्चुअली क्या हुआ था कि थियोरेटिकल रन के बाद जब रिलीज हो गई तो फिल्म 3 घंटे 27 मिनट की थी. और जब शिकायतें आने लगी तो मेकर्स ने क्या किया, फिल्म को काटना शुरू किया और उसमें से 2 पूरे के पूरे गाने निकाल दिए. 10 अगस्त मतलब रिलीज के 5 दिन बाद ये कट्स होना शुरू हुए. एंड ऑलमोस्ट कुछ 1100 feet ऑफ द फिल्म वॉज रिड्यूस्ड. मतलब फिल्म को छोटा कर दिया गया 3.5 घंटे से 3.25 घंटे, 15 मिनट कट कर दिया गया फिल्म को. और फिर से लोगों के अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आने लगे और लोग फिल्म से जाकर के इसको देखने लगे. तो 2 गाने इसमें से निकाले गए थे इस फिल्म में से, और कुछ सीन्स भी कट हुए थे. मुझे अच्छे से याद है, ये मेरी फेवरेट फिल्म है, ऑल टाइम फेवरेट. चाहे कितनी भी फिल्में आ जाएं, हम आपके हैं कौन मैंने अनगिनत बार देखी है मैं, और आज भी सोफे पर ना बैठ करके इसको पूरी की पूरी देख सकती हूँ अनकट सीन्स के साथ, मतलब पूरी जो पूरी फिल्म है उसके साथ. सो यस, 2 गाने निकाले गए थे इस फिल्म से. पहला गाना मैं प्ले कर रही हूँ आप लोगों के लिए और उसके बाद दूसरा गाना आप मुझे बताएंगे कि कौन से दो गाने कट हुए थे. लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि अगर आप अच्छा खाना ढूंढ रहे हैं प्लेनों में ना, तो सिग्नेचर कुजीन के पास जाइए. दे हैव ऑल द राइट फ्लेवर्स. एंजॉय देयर फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन एंड माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. प्लानिंग अ बर्थडे, एनिवर्सरी और स्पेशल सेलिब्रेशन, दे ऑल्सो ऑफर बैंक्वेट हॉल सर्विसेज. विजिट सिग्नेचर कुजीन एट स्प्रिंग क्रीक एंड I'm sorry, Spring Creek and Alma in East Plano, or go to signaturecuisine.net. Signature Cuisine, leaving the signature on every taste. तो ये गाना प्ले कर रही हूँ फिल्म हम आपके हैं कौन से, जैसा मैंने बताया दो गाने कट हुए थे, पहला मैं प्ले कर रही हूँ, दूसरा आप मुझे बताइए 972-235-5555 पे कॉल करके।

0: you.
1: Okay, so there was this beautiful track from the movie Hum Aapke Hain Kaun. And dusra gana aa gaya hai mere paas. Pulkit ne call karke bata diya kaun sa gana dusra hai jo ki is film se cut hua tha. वो उसकी तरफ हम जल्दी से आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें टेक्सस बिजनेस ओनर्स, ये आपके लिए है, ध्यान से सुनिए. लुकिंग फॉर स्मार्ट कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस, ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002 विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. कॉल 8444282808. पुलकित, मेरा गाना खत्म हो गया था इसलिए मैंने आप बात अधूरी कर दी, लेकिन हम जरूर पूरी करेंगे बात. पुलकित ये बता रहे थे ना कि मैंने जब बोले कि दो गाने हुए थे तो उनको पता लग गया था कि वो दो गाने कौन से. ही वाज वेटिंग फॉर मी टू प्ले द फर्स्ट सॉन्ग एंड देन ही वुड टेल मी द सेकंड सॉन्ग. तो उन्होंने मुझे कॉल किया. लेकिन हाँ, इस फिल्म की अगर और बात करें तो फिल्म में सबके दिलों में जगह तो बना ली थी. और फिल्म को जब छोटा किया तो मेकर्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और सडनली उसकी कलेक्शन बढ़ने लगे हर दिन. मतलब बोलते ना, दिन दुनी रात चौगुनी वाली तरक्की होने लगी फिल्म की. एंड ये उनका डिसीजन बहुत अच्छा था. सलीम खान ने उन्हें एडवाइस किया था कि ये दो गाने आप निकाल दें, फिल्म थोड़ी छोटी हो जाएगी और लोग पसंद करने लगेंगे. और कई शहरों में जैसे कि देहरादून, गांधीनगर, निज़ामबाद, ये छोटे शहर जो थे ना, वो इन गानों को एंजॉय कर रहे थे और उनको पूरा वर्जन चाहिए था. तो राजश्री ने कुछ अनयूजुअल किया. फिल्म कुछ दिन चली और उसके बाद उन्होंने नए प्रिंट्स प्रिपेयर किए जिसमें ये दो गाने ऑलरेडी इंक्लूडेड थे और उसको उन्होंने रिलीज़ कर दिया. That is why हम आपके हैं कौन है ना, उसको दो डिफरेंट मेमोरीज है लोगों की उस फिल्म को लेकर के. वन पर्सन कुड हैव सीन द शॉर्ट वर्जन वाइल सम वॉचिंग इट लेटर कुड हैव सीन द लॉन्ग वर्जन कंटेनिंग द टू सॉन्ग्स. मैंने दोनों वर्जन देखे हैं और ये दोनों गाने भी मुझे बहुत पसंद आए थे जब री रिलीज हुआ. मुझे लगता है सबने ही दोबारा देखी होगी, थिएटर नहीं जाके सही तो घर पे तो दोबारा देखी ही होगी. और इस फिल्म का ना कुछ टाइमलाइन बड़ा अजीब सा है क्योंकि 5 अगस्त को ये रिलीज हुई, 3 घंटे 27 मिनट की फिल्म थी. 10 अगस्त को इसके कट शुरू हुए, दो गाने निकले और उसके बाद क्या हुआ, अगस्त के अंत तक, मतलब कुछ महीनों के एक महीने बाद तक नया प्रिंट रिस्टोर हो गया जिसमें दोनों गाने थे. और फिर 1994 में मुझे अच्छे से याद है गाने आए और उसके बाद से फिल्म में कुछ सीन्स जो कि फिर से ऐड हो गए. मतलब मेकर्स ने इसे बिल्कुल बवाल ही मचा दिया था मेरे हिसाब से. मेरी फेवरेट फिल्म है इसलिए बता रही हूँ. तो उसमें फिर फिल्म के कुछ सीन्स भी ऐड हो गए जहाँ पर टफी, जो प्यारा सा पॉमरेरियन था इसमें, उसके सीन्स ऐड किए गए. फिर ये मौसम का जादू है मित्रवाल जो गाना ख़त्म होता है और माधुरी जब घर आती है सबके लिए गिफ्ट्स लेकर के, वो वाला सीन. उसके बाद से टेम्पल का थोड़ा सा जो मंदिर का सीन है उसको बढ़ा दिया और निशा और प्रेम के भाई का जो सीन है उसको बढ़ा दिया. मतलब जो लेडीज फंक्शन हुआ था ना उसके पहले. अगर आपको मेरी ये बातें, अगर आप हम आपके हैं कौन के फैन हो तो ये सारे सीन्स आपको जरूर याद होंगे. और यस, ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट थी. राजश्री प्रोडक्शंस की सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में इसको याद किया जाता है. ऑब्वियसली ये फिल्म भी राजश्री की ही एक फिल्म का मॉडर्न वर्जन था. अब आप ही बताइए कौन सी फिल्म का मॉडर्न वर्जन था. याद है आपको राजश्री की वो फिल्म जो कि पहले आई थी जिसमें सचिन पिलगांवकर थे, उसी फिल्म को मॉडर्न वर्जन के साथ बना दिया गया था. जल्दी बताइए. फिलहाल इस गाने का मजा भी लीजिए, हम आपके हैं कौन का दूसरा डिलीटेड सॉन्ग जो बाद में ऐड किया गया.

इस फिल्म की हर चीज आइकॉनिक बन गई थी, चाहे वो माधुरी दीक्षित का ओहो या फिर आहा ये वाला म्यूजिक हो। हर किसी के दिल में जगह बनाई थी इस फिल्म में, और इस फिल्म के सारे ही गाने बहुत ही अच्छे थे। एक्चुअली ये फिल्म म्यूजिकल एक फैमिली फिल्म थी, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि इस फिल्म के हर सीन पे, हर ओकेजन पे, चाहे शादी हो, ब्याह हो, तिलक का फंक्शन हो, जूता चोरी की रस्म हो, या फिर किसी के घर से जाने का टाइम हो, हर ओकेजन के गाने इस फिल्म ने हमें दिखाए हैं। और मैंने जो अभी एक सवाल पूछा था इस गाने के पहले कि कौन सी फिल्म है जिसके ऊपर, जो राजश्री की फिल्म थी जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है, द मॉडर्न वर्जन ऑफ नदिया के पार, काफी लोगों ने सही जवाब दिया। रूपल आई एम सॉरी गुरमीत जी ने सही कॉल किया, लक्ष्मी जी ने कॉल किया, एंड इन सब ने सही जवाब दिया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, पर जवाब सही देते हैं वो, तो ऐसे हमारे कॉलेज हैं कुछ। तो हम आपके हैं कौन उन आइकॉनिक फिल्म्स में से है जिसने अपनी जगह बनाई है। तो भाई चलिए, मेरा अब वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है, 2 घंटे कैसे बीते, मैं कई फिल्मों के बारे में बात ही नहीं कर पाई, बट मुझे लगता है अगेन कल की तरह आज भी मुझे अपना दिस पार्ट ऑफ द शो कंटिन्यू करना पड़ेगा अगले मंगलवार को। तो हम फिर कुछ और ऐसे गाने लेकर के आएंगे जो बाद में फिल्मों में ऐड हुआ है, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो 2 गाने थे, चॉकलेट लाइम जूस और मुझसे जुदा होकर, ये फिल्म से पहले थे, फिल्म में पहले थे, फिर हटाए गए फिल्म को छोटा करने के लिए, और लोगों का रिस्पांस देखने के बाद इनको फिर से ऐड कर दिया गया था फिल्मों में। तो बस यही था आज का हमारा प्यारा खूबसूरत एपिसोड, जिसमें आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया है। आई एम सो ग्लैड कि आपने कॉल किया, जवाब दिया, और मेरे शो को और इंटरेस्टिंग बनाया। फिलहाल मेरे बाद यहाँ पर होंगी सुनहरी किरण, जो कर लेके आएंगी आफ्टरनून ड्राइव टाइम आप लोगों के लिए। बड़ा ही प्यारा इंटरेस्टिंग था शो है। हमारे सारे आरजेज बहुत मेहनत करते हैं, हर दिन स्टूडियो में आते हैं और आपको एंटरटेन करते की बहुत कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और सुनते रहिए फन एशिया 104.9 FM। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, आज के लिए जाती हूँ, कल फिर वापस आऊंगी वेंसडे ठीक 12:30 बजे, आपको छोड़े जा रही हूँ हम आपके हैं कौन के इस प्यारे से गाने के साथ। आज के लिए टाटा, बाय बाय, एंड वी मीट अगेन टुमारो। योर होस्ट आयुषी इज साइनिंग ऑफ।

लेकिन जाने के पहले आपको एक जानकारी तो दे दे, प्लानिंग टू बाय योर ड्रीम होम एंड मेक स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो जरूर जाइए गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो में, जो कि आ रहा है माई स्क्वायर फीट की तरफ से, बिगेस्ट इंडियन प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को. मीट लीडिंग डेवलपर्स फ्रॉम बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली एनसीआर, एक्सप्लोर ओवर 200 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ. जॉइन द अक्टूबर

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Floors clean.
1: Check.
3: Windows clean.
1: Check.
3: Kitchen clean.
1: Check.
3: Air ducts clean.
1: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
4: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
5: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
6: लैपटॉप में।
5: इन्वेस्टमेंट?
6: गूगल ड्राइव।
5: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
6: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
5: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
7: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
8: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
9: From elegant sarees, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
8: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
9: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully. Celebrate stylishly.
10: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
11: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
10: नहीं।
11: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
10: नहीं।
11: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
10: वो भी नहीं।
11: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: अगर किसी चीज को दिल से चाहो,
14: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
15: डील कहाँ?
14: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या। डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
15: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
20: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

जी हाँ, गाना सुनते ही एक बड़ी ही मज़े की फीलिंग आ गई, क्योंकि रणबीर कपूर पे पिक्चराइज हैं कुछ ऐसे खूबसूरत गाने जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हमारे इस बॉलीवुड स्पॉटलाइट स्पेशल में। और बॉलीवुड में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, ये नाम लेगेसीज होते हैं। राज कपूर, ऋषि कपूर और फिर एक दिन कपूर खानदान के नेक्स्ट जनरेशन से एक बहुत ही ब्यूटिफुल हैंडसम स्मार्ट सा लड़का आया, दैट Is Ranbir Kapoor. He was born on September 28, 1982, और of course हिंदी सिनेमा की सबसे वन ऑफ दोज फेमस फैमिलीज में पैदा हुए ये ऋषि कपूर के बेटे नीतू सिंह एंड ऋषि कपूर, ग्रैंड सन ऑफ पृथ्वी राज कपूर. सो एक्टिंग एंड स्पॉटलाइट रन्स इन हिज ब्लड. लेकिन जो है ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जरूर था कि अगर आप राज कपूर के ग्रैंड सन हैं, ऋषि कपूर के बेटे हैं, तो क्या सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं. I think Ranbir Kapoor has really done a very good job and has, is, I guess, deserve every success that he has today.

रणबीर कपूर पे हमने डाली है स्पॉटलाइट बॉलीवुड स्पॉटलाइट में और उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज्ड कुछ आउटस्टैंडिंग गाने अगले एक डेढ़ दो घंटे में आपके लिए प्ले करने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं। स्पेशली इफ यू आर अ बिजनेस ओनर देन योर ब्रांड नीड्स मोर देन जस्ट सोशल मीडिया पोस्ट। उसको वो अटेंशन चाहिए, वो रीच चाहिए, वो रिजल्ट्स चाहिए जो उसे पब्लिक की आई में लेके आए। एंड नाउ फाइनेंशिया नेटवर्क ब्रिंग्स इट्स मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल media with relative media. जी हाँ, from scroll stopping reels and eye-catching graphics to captions to content distribution and amplification across FunAsia's radio, digital as well as community platforms, Relative Media gives your business a complete content solution. सब कुछ एक ही साथ. So whether you need better content या फिर आप stronger visibility चाहते हैं या फिर आप bigger audience reach चाहते हैं, Relative Media can help your brand stand out. तो अगर आपका कोई भी सवाल है और यू वांट टू बुक योर नेक्स्ट कंटेंट ऑडिट देन गिव देम अ कॉल 469-424-3188 उनका नंबर। दिस इज रिलेटिव मीडिया पावर्ड बाय फन एशिया नेटवर्क। योर कंटेंट आर रीच व्हिच रिजल्ट्स इन ऑफ कोर्स अ मच बिगर प्रोडक्ट।

जी हाँ, रणबीर कपूर के पास बॉलीवुड का सरनेम तो डेफिनेटली था, मगर एक चीज उनके पास उस वक्त नहीं थी जब उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, और ऑफ कोर्स वो थी अपनी आइडेंटिटी। और अगले 15-20 साल रणबीर का सबसे बड़ा मिशन यही रहा कि उन्होंने बनानी है अपनी एक अलग आइडेंटिटी, रणबीर कपूर द बॉलीवुड स्टार। और आई थिंक आज ही हैज़ रियली रीच्ड वेयर ही वांटेड टू रीच। करियर का आगाज कैसे हुआ ये आपको जल्दी से बताती हूँ। इन्होंने अपने करियर का आगाज किया, वैसे तो अगर आप देखिए तो लिखा आता है कि प्रेम ग्रंथ और आप लौट चलें, जो 96 और 99 में आई थी, इसमें रणबीर कपूर ने अपना असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया। लेकिन जो स्क्रोल्स सही बताते हैं वो ये कि जो प्रॉपर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे रणबीर कपूर ने काम किया था वो किया था 2005 की फिल्म ब्लैक के लिए संजय लीला भंसाली के साथ। ही वर्क्ड एज द असिस्टेंट डायरेक्टर इन दिस मूवी एंड देन अगली मूवी संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर के साथ बनाई जिसमें उन्हें मिला मेन लीड रोल। मूवी थी सांवरिया जिसका गाना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए प्ले किया। उसके बाद आई मूवीज लाइक बचना ए हसीनो एंड वेक अप सेड और फिर अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह, राजनीति एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक टिल वन मूवी केम दैट जस्ट कंप्लीटली चेंज्ड हाउ वी ऑल लुक्ड एट रणबीर कपूर। लेकिन वो कहानी इस गाने के बाद।

Timeless Elegance has a new destination in Frisco. Ji haan, PMJ Jewels is now on Main Street in Frisco. They are bringing over 60 years of jewelry excellence and the beauty of traditional Indian craftsmanship to our community. So, aap aaiye, discover kijiye stunning gold and bridal collections. Saath hi saath, diamond ki beintaha khubsurat jewelry hai unke paas. It is perfect for weddings, celebrations, special moments, and the stories that you will treasure the most and forever. Because right piece of jewelry, wo nahi hoti jo hum pehen le, it becomes a part of our story. Hamari pictures mein, hamari story mein, hamari baaton mein, wo ek piece of zevar jo humne pehna hota hai, wo bohat value rakhta hai. To us piece of jewelry ko dhoondiye PMJ Jewels par. Located on Main Street in Frisco, PMJ Jewels, 60 years of craftsmanship and a lifetime of memories. ये तो हुआ आपके लिए PMJ Jewels. जेवर की शॉपिंग हो तो वो बड़ी जरा मुझे पैशनेट हो जाती हैं लड़कियां, खवातीन खासतौर पे उस बारे में. अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं रणबीर कपूर की तरफ. रणबीर कपूर को एक इमेज मिलने लगी चार्मिंग, यंग, रोमांटिक, स्टाइलिश हीरो की. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी उनकी सारी इस सारे के दरमियान, वो था उनका नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस. वेकअप सिड से उन्होंने रोल किया एक कन्फ्यूज्ड यंग मैन का, जिसको खुद नहीं पता था कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए. सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड, लेजी, इमेच्योर, लेकिन वेरी रिलेटेबल. रॉकेट सिंह, ही वॉज एक तरफ ही वॉज अ रोमांटिक हीरो, दूसरी तरफ ही वॉज अ सेल्स मैन. तो रणबीर वॉज इन रशिंग टू बिकम ओनली अ स्टीरियोटिपिकल बॉलीवुड हीरो. ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग. अजब प्रेम की गजब कहानी आई तो कॉमेडी टाइमिंग, इनोसेंस, रोमांस दिखाया, और फिर एक नया दौर उनके करियर का शुरू हुआ विद राजनीति and rock star.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Heere moti, main na chahu.
6: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
7: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
12: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
13: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
12: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
13: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
10: कितनी लंबी लिस्ट है?
14: बस दो पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ एक पूजा मंदिर भी.
10: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो. SFL Worldwide है ना, इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
15: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड Worldwide. विजिट SFLWorldwide.com.
16: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
17: I'm James Tallarico, and I approve this message.
18: Paid for by Tallarico for Texas.
19: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
20: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेजिया रेडियो।

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran May. This is Bollywood Spotlight. Spotlight dali hai humne Ranbir Kapoor pe. But before we move forward, I must tell you, your financial future deserves a strategy, not a guess. So led by CPA Sudhir Pai, My Time Equity aapko deta hai personalized strategies designed around your financial goals. From portfolio management and real estate to alternative investments or saath hi saath retirement planning. So whether you're building wealth ya phir aap diversify kar rahe ho apni investments ko ya phir you're planning for a future, a stable and a secure future, get a strategy designed with your goals in mind. Where? Visit mytimeequity.com or you can give them a call. 469-702-1272. The number again is 469-702-1272. My Time Equity. Your goals need a strategy that can give you the best financial future. Contact mytimeequity.com. अच्छा जी, ये तो हुई आपके लिए ये बात. और अब हम रणबीर कपूर की बात वहीं से शुरू करते हैं जहां पे रोकी थी, और मूवी थी राजनीति. राजनीति 2010 में आई, और यू नो राजनीति वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी. इससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि रणबीर का एक थोड़ा सा स्टाइल बन रहा था, रोमांटिक एंड स्टाइलिश एंड यू नो चार्मिंग, लेकिन रणबीर वॉज लाइक डू नॉट पुट मी इन अ बॉक्स. राजनीति वॉज अ पोलिटिकल ड्रामा एंड अनदर मेजर डिपार्चर फ्रॉम हिज रोमांटिक इमेज ऑफ कोर्स. और उनके करियर ने एक डिफरेंट पाथ को अब अडॉप्ट करना रणबीर कपूर ने शुरू कर दिया था. और शुरुआत हुई थी राजनीति से. राजनीति का अभी एक गाना मैंने आपके लिए प्ले किया था जब हम ब्रेक पे जा रहे थे. और राजनीति के बाद आई उनके करियर की वो डिफाइनिंग फिल्म जिसने कंप्लीटली रणबीर कपूर के इमेज को बदल के रख दिया. दैट वाज रॉकस्टार.

0: जी हाँ, जॉर्डन का रोल किया था इन्होंने रॉक स्टार में, और एक लड़का जो ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्यार में टूटा हुआ है और उस टूटने को बना लेता है वो अपनी म्यूजिक की आवाज. ये बन गई मूवी उनके करियर का मेजर टर्निंग पॉइंट. इम्तियाज अली, ए आर रहमान, जॉर्डन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, म्यूजिक, और साथ ही साथ वो जुनूनियत, वो इंटेंसिटी, वो पैशन, वो आप कह लीजिए परफॉर्मेंस जो रणबीर कपूर ने इस रोल में डाली, दैट वाज अनमैचेबल. कभी मैं सोचूं कि अगर रॉकस्टार में मैं किसी और को देखना चाहूं तो क्या कोई और वो वाला रॉकस्टार का इमेज या इंटेंसिटी क्रिएट कर सकता है जो जॉर्डन के लिए रणबीर कपूर ने की, तो शायद मेरा जवाब होगा नहीं. रणबीर वन द फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर एज वेल एज द फिल्म फेयर क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर बोथ फॉर दिस मूवी रॉकस्टार. और अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ और उसके लिए लेकर आई हूँ आपके लिए फन पिज्जा किचन की तरफ से एक गिव अवे. फन पिज्जा किचन का तो वैसे आप funpizzakitchen.com पे लॉग ऑन कीजिए, आप उनका सारा मेन्यू चेकआउट कीजिए. यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग दैट विल एक्साइट यू एज वेल एज योर चिल्ड्रन, उनके भी टेस्ट बड्स के लिए और आपके भी टेस्ट बड्स के लिए. और अब उन्होंने एक नया मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप शुरू किया है. चाहे आप वेजिटेरियन लवर हैं, चाहे आप चिकन लवर हैं, या आप सी फूड लवर हैं, एक एक चीज उन्होंने बड़ी हैंड पिक, बड़ी समझ से आपके लिए एक मेन्यू बनाया है. सो जरूर उस मेन्यू को चेकआउट कीजिए funpizzakitchen.com और विजिट their locations. They are located on in Colony as well as Frisco. ये $10 का मैं आपके लिए एक gift लाई हूँ. This is $10 off your next bill from Fun Pizza Kitchen. आपको Frisco location से इसको avail करना होगा. So आपको मुझे ये बताना है कि आपके नज़दीक रणबीर कपूर की बेहतरीन performance कौन सी है. That can be Rockstar, that can be Barfi, that can be Tamasha, Sanju, Animal, Brahmastra, जो भी आपकी पसंद की रणबीर कपूर की बेहतरीन performance है वो मुझे बताइए. और ये भी बताइए कि आपको उनकी वो performance क्यों अच्छी लगी. I'd love to know why you like it. If you like Rockstar, why do you like it? जैसे मैंने आपको बताया मेरी बेहतरीन पसंदीदा परफॉर्मेंस है उनकी रॉक स्टार की. द पैशन, द इंटेंसिटी एंड द क्रेजीनेस इज व्हाट आई एब्सोल्युटली लव्ड. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: हाय, दिस इज अरुण कुमार.
0: जी अरुण, बताइए
1: कौन सी मूवी का नाम लूं. मैं तो ये सोचता हूँ वो ये जो कपूर खानदान से है तो एक मूवी का नाम सोचूं तो दूसरी मूवी अच्छी लगने लग जाती है, दूसरी मूवी सोचूं तो तीसरी अच्छी लगने लग जाती है.
0: जी चलिए यूं करें कि टॉप थ्री बता दें.
1: टॉप थ्री में मुझे बचना है सीनो, राजनीति और वेकअप सेट बहुत अच्छी लगती है.
0: अच्छा, आपने बड़ी अनकन्वेंशनल मूवीज बताई हैं, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जिन मूवियों के लिए उन्हें अवार्ड मिला था. तो आप मुझे बताइए कि आपको इनकी ये जो मूवीज हैं ये आपको क्यों अच्छी लगती.
1: देखो वेकअप सीट में उसका जो काम था पहले एक बच्चे का और फिर बाद में मैच्योर होने का बहुत अच्छा लगा उसके एक्टिंग. और राजनीति में तो उसने जो है रोमांस का नाम नहीं लिया. तो उसमें उसने बाद में अग्रेसिवनेस दिखाई, जो अग्रेसिवनेस दिखाई वो रोल बहुत अच्छा था.
0: राइट राइट.
1: And, और बचना है सीनों में बिल्कुल चॉकलेटी था वो.
0: Right, right, the charming, stylish young man. बिल्कुल सही.
1: Right.
0: All right, अरुण सुनते रहिए. I will, if you are the winner, I will ask you to give me a call back. I will announce the winner after this. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
2: Hi, this is Shivani.
0: जी शिवानी, बताइए. आपकी कौन, जी कौन सी फिल्म है आपकी उनकी फेवरेट?
2: It's my all-time favorite of Ranbir Kapoor's movie is Barfi.
0: Barfi. And why do you like, of course, we all know why everybody likes Barfi, but aapko kyun achhi lagi?
2: Yeah, he's irreplaceable in that. I don't think anybody else, how much ever big actor, anybody else could have done any justice of what Ranbir has done. And equally, I like Priyanka's role in that as well. Somehow, Barfi was all-time classic for me, so... Of course, रणबीर कपूर ने अच्छा किया ही है.
0: अच्छा, रणबीर कपूर को जब हम किसी रोल में देखते हैं तो फिर वो ऐसे उस रोल को ओन करते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके सिवा ये रोल और कोई नहीं कर सकता था. राइट,
2: एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम एज इवन वेकअप सिड्स रोल आल्सो, इट वाज प्रीटी नाइस, बट बर्फी वाज हाईएस्ट सो फार बिकॉज प्लेइंग अ म्यूट डेफ एंड दैट काइंड ऑफ पर्सन इज एनीवेज डिफिकल्ट.
0: Absolutely.
2: But in that, he again brought some cuteness and some, you know, sensitivity somehow. Some, it was very, magical.
0: बिल्कुल सही, आप बिल्कुल absolutely, I we got the point, and because he has such a charming personality, so whatever he does, it just becomes magical. So thank you Shivani, और सुनते रहिए, मैं भी announce करूँ. You're welcome. Fun Asia Radio, you are live on air. अपना नाम बताइए.
3: मेरा नाम पूजा है.
0: जी पूजा, बताइए.
3: मेरी जो पर्सनल फेवरेट मूवी है वो बर्फी है, एंड वो उसकी स्टोरी की वजह से, एंड रणवीर कपूर जैसे बाकी सब लोग भी कहेंगे या कह रहे होंगे, आई मीन व्हेन ही डज एनी रोल ही एक्चुअली प्ले दैट करेक्टर, और वो उनमें खूबी शायद बहुत यंग एज से थी. सो कुछ लोग आते हैं फिर सीखते हैं फिर मैच्योरिटी आती है, बट ही हैज इट इन इट because family se bhi aa raha hai.
0: Absolutely.
3: So Barfi is definitely, Jagga Jasoos meri puri family ki favorite hai, matlab mere bacche hain 10 and 6 unki bhi favorite hai wo.
0: Okay, aur galti

0: नमन अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज कॉल बैक कीजिए. आपका लकी नंबर निकला है एज द विनर फॉर फ्रंट पिज्जा किचन $10 ऑफ योर नेक्स्ट बिल फ्रॉम फ्रिस्को लोकेशन. नमन इफ यू आर लिसनिंग प्लीज गिव मी अ कॉल इन टू ऑल ऑफ यू हु पार्टिसिपेटेड. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: हुजूर आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
3: बेगम मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
2: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में.
3: दम में नरमी मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
4: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
5: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
4: Barista House, richness of biryani bliss.
6: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
8: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
9: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता 10 दिन अगले ट्यूसडे
10: तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख.
11: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑबरी.
9: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
12: इरविंग वालों ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
13: Dil ki baat kisse kahe?
14: Pandit Gurudev se. 35 saal se zyada ke experience ke saath, Pandit Gurudev karte hain kundali reading, birth chart analysis, palm reading और फेस रीडिंग. ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में एक्सपर्टाइज. प्यार शादी या रिश्तों की उलझन हो तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए. कॉल 4695811777. दैट्स 4695811777. पंडित गुरुदेव आइए अपनी बात कहिए.
15: A.R. रहमान लाइव विद अ फुल ऑर्केस्ट्रा. Experience the Grammy and two-time Academy Award-winning composer behind Slumdog Millionaire like never before. The A.R. Rahman Symphonic Experience brings his iconic music to life in an extraordinary symphonic celebration, October 29th at Texas Trust Credit Union Theater. One night, a live orchestra, the music of A.R. Rahman. Don't miss it. Get your tickets now.
16: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेजिया रेडियो.

104.9 FM फनी शेयर रेडियो सुन रहे हैं आप. फिल्म बेशरम से ये गाना चल रहा था, रणबीर कपूर स्पेशल, यानी ये बॉलीवुड स्पॉटलाइट ऑन रणबीर कपूर आज डाली है हमने, और मैं हूँ आपके साथ 5 बजे तक. ये सिलसिला गानों का आपके साथ चलता रहेगा जब तक के गाने रणबीर कपूर के ऊपर खत्म नहीं हो जाते. आपके लिए प्ले करती रहूंगी. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड योर अमेजिंग इनपुट. जब मैंने आपसे पूछा आपका रणबीर कपूर का फेवरेट रोल क्या है, और आप सब ने मुझे बड़ी जबरदस्त फिल्में याद दिलाई, और इस सारी बात से एक चीज जो है अक्स की हमने, और वो ये कि रणबीर कपूर जो भी रोल करते हैं उसको वो ओन कर लेते हैं, यानी कि फिर ऐसा लगता है कि इनके सिवा इस रोल को और कोई नहीं कर सकता था. चाहे वो फिल्म हो वेक अप सिड, या वो हो सांवरिया जिसमें वो एक बड़े क्यूट से बॉय नेक्स्ट डोर से बने थे, या फिर हो रॉक स्टार, या फिर हो बर्फी, या फिर हो ये जवानी वो दीवानी, कोई भी रोल जो उन्होंने किया उसको बना लिया खास रणबीर कपूर, पर्सनल रणबीर कपूर रोल. तो जी ये बर्फी जो आप सबने बार बार इस मूवी का नाम लिया, रणबीर कपूर ने ऑडियंस को बर्फी से वाकई सरप्राइज कर दिया था. एक कैरेक्टर हु स्पीक्स रियली रियली लिटिल, फिर भी वो क्या इनॉर्मसली एंड पैशनेटली कम्युनिकेट करते थे अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपनी फिजिकैलिटी के थ्रू, अपनी इमोशंस के थ्रू. बर्फी ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया, कभी कभी एक्टर को डायलॉग की जरूरत, एक्टर को याद रखिए बात, अच्छे परफॉर्मर को, एक्टर को डायलॉग की जरूरत नहीं होती. रणबीर ने बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर जीता फॉर द मूवी बर्फी एज वेल एज रॉक स्टार उस साल. और फिर आई उनकी अगले साल ये जवानी है दीवानी, जिसमें उन्होंने कम्प्लीटली बैक टू यू नो डिफरेंट एक रोल में आ गए, वो सीरियस रोल और थोड़े डिफरेंट रोल से बदल के आ गए ये जवानी है दीवानी में, जिसमें वो दीपिका पादुकोण के साथ बहुत अरसे बाद नजर आए. एंड व्हाट अ मूवी इट वाज, ट्रैवल एंड फ्रेंडशिप एंड लव एंड एम्बिशन एंड ग्रोइंग अप एंड इवेंचुअली रियलाइजिंग व्हाट रियली मैटर्स, दैट वाज ये जवानी है दीवानी.

और अगर आपका कुछ खाने पीने का प्लान बन रहा है और आप सोच रहे हैं कि कुछ घर जैसा खाना खाना है लेकिन घर में नहीं पकाना, कई बार ऐसा टाइम आता है जब बिल्कुल घर में खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा होता है, एंड आई थिंक ऑल द लेडीज विल डेफिनेटली रिलेट टू दैट. तो आपको मैं बताऊं कि चाहे आपका बटर चिकन खाने का दिल है या बिरयानी या फिर पनीर टिक्का या फिर दाल मखनी या फिर और भी बड़ी ज़बरदस्त डिशेज हैं कहाँ पे, दिस इज़ तंदूरी फ्लेम जो कि गार्लिन में लोकेटेड है. और अब एक और रीज़न है वहाँ जाने का, खास तौर पे मंडे थ्रू थर्सडे उन्होंने शुरू किया है फ्लेम आवर आपके लिए. व्हेन 5 PM to 8 PM व्हेन यू ऑर्डर टू आंट्रेज यू विल गेट वन एपेटाइजर कॉम्प्लीमेंट्री. तो ये ज़बरदस्त आपके लिए फ्लेम आवर चल रहा है तंदूरी फ्लेम पे जो कि गार्लन में लोकेटेड है, मंडे थ्रू थर्सडे 5 PM till 8 PM. उनकी वेबसाइट पे लॉग ऑन कीजिए और देखिए कि जब आप दो एंट्रीज ऑर्डर करेंगे तो कौन सी फ्री एपेटाइजर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइजर आप ऑर्डर करेंगे. तंदूरी फ्लेम TX.com इज वेर यू नीड टू लॉग ऑन. तंदूरी फ्लेम TX.com. दिस इज योर यू नो प्लेस जहाँ पे आप उनका मेन्यू चेकआउट कर सकते हैं, उनकी लोकेशन, उनकी टाइमिंग एंड सो मच मोर. सो तंदूरी फ्लेम पे आइए, वेयर फूड कम्स विद अ लिटल एक्स्ट्रा हीट एंड अ लिटल एक्स्ट्रा लव. बात हो रही है रणबीर कपूर की. भाई रणबीर कपूर की बात हो तो थोड़ी बहुत लव की बात तो होती ही है, और ये तो मैंने आपको खाने का लव बताया. अब हम वापस जा रहे हैं रणबीर कपूर के ऊपर और रणबीर कपूर के बारे में. ये जो फिल्म थी ये जवानी है दीवानी, ये वो दौर था रणबीर के करियर का जब व्हेन ही वाज गिविंग हिट पे हिट पे हिट पे हिट. ये जवानी है दीवानी, रॉक स्टार, बर्फी, राजनीति, और इन फिल्मों की सुपर डुपर सक्सेस के साथ रणबीर कपूर बिकेम द वॉइस ऑफ द जेनरेशन दैट यू नो जो उनको इस वक्त लोगों को ज़रूरत थी कि करियर भी है, लव भी है, ट्रैवल भी है, फ्रीडम भी है. रणबीर कपूर की यूथ अपील का डिफाइनिंग मोमेंट था ये मूवी, ये जवानी है दीवानी. लेकिन उसके बाद स्टार्ट हुआ रणबीर के करियर का डार्क फेज. कुछ ऐसी फिल्में जिन्होंने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, और ऑफ कोर्स आपको पता है कि सिनेमा का यही कहानी है, जुम्मे के जुम्मे यहाँ पे तकदीरें बनती और बिगड़ती हैं.

2014 से 2017 ये वो तीन साल थे जिन्होंने रणबीर को बहुत तंग किया, क्योंकि कुछ ऐसी फिल्में उनकी रिलीज हुई जो बिल्कुल नथिंग वॉज वर्किंग. मतलब इससे पहले सब कुछ वर्क कर रहा था, जो भी रणबीर करते थे वो वर्क करता था, लेकिन फिर ऐसी फिल्में आनी शुरू हुई, नथिंग वर्कड विद द ऑडियंस. आपको कुछ नाम बताती हूँ, जैसे कि बेशरम, उसके बाद रॉय, बॉम्बे वेलवेट, तमाशा. तमाशा वॉज काइंड ऑफ समथिंग दैट पीपल लाइक्ड, लेकिन फिर भी उसने बॉक्स ऑफिस पे वो कमाल नहीं किया जो कि रणबीर की फिल्मों को आदत हो चुकी थी कमाल की. इसी तरह ए दिल है मुश्किल. तो ये इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात आपसे ज़रूर करूँगी, लेकिन वो जो सक्सेस की आदत रणबीर को बन चुकी थी वो इन फिल्मों से सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. सो दैट इज़ वाई जब हम इनके बारे में बात करते हैं या पढ़ते हैं तो इसको थोड़ा सा डाउन फेज कहते हैं रणबीर के करियर का. सो फिर क्या हुआ और अगली हिट उनकी कमबैक कौन सी बनी, ये कहानी अभी जारी है. आपको बने रहने पड़ेगा मेरे साथ राइट हेयर ऑन 104.9 FM फन एजे रेडियो, ताकि इस कहानी को मैं और आप एक साथ पूरा करें.

2013 बेशरम, जिसमें उन्होंने एक यू नो मतलब इट वॉज जस्ट अ पॉसिबल मूवी, बॉलीवुड डिड नॉट लाइक, बॉक्स ऑफिस आप कह लीजिए डिड नॉट लाइक इट. 2015 में आई उनकी रॉय. सारी ये जो फ्लॉप फिल्म्स थी जो उनकी आई, इनमें भी एक बात स्टैंड आउट करती थी और वो था उनका म्यूजिक. कुछ ऐसे खूबसूरत गाने उन फिल्मों में भी आए जिनको अभी तक प्ले किया जाता है, याद रखा जाता है, जैसे कि मैं आपके लिए प्ले कर रही थी. उसके बाद आई जी रॉय के बाद बॉम्बे वेलवेट, वो दैट वाज मेरे ख्याल बिल्कुल ही पॉसिबल फिल्म थी, बात भी उसके बारे में क्या ही की जाए, लेकिन गाना एक दो बड़े अच्छे थे उसके अंदर. और फिर आई मूवी तमाशा. तमाशा ये शायद रणबीर कपूर की फिल्मोग्राफी की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म में से एक है. ही वॉज द रोल ऑफ वेद जो उन्होंने किया, जिसमें वो एक लाइफ जी रहे हैं, सोसाइटी जो उनसे एक्सपेक्ट करती है, लेकिन इंटरनली वो कुछ और करना चाहते हैं. दिस इज नॉट व्हाट हाउ ही वांट्स टू लिव. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमसे एज एन ऑडियंस भी पूछा गया, जो कि मैं आप लोगों के लिए भी थ्रो आउट करती हूं, कि क्या हम भी वही लाइफ जी रहे हैं जो हम एक्चुअली में जीना चाहते हैं, या हम कोई सोशल प्रेशर, कोई नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर लिविंग जस्ट बिकॉज वी हैव टू लिव इट.

अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जी. और मैं राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण आपको बताने वाली हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए अवेलेबल है. दे आर ओपन सैटरडेज एंड संडेज एज वेल, क्योंकि बंदा तबीयत खराब वीक डेज और वीकेंड देख के तो नहीं होती, कभी कभी वीकेंड पे भी खराब हो जाती है. और दूसरा ये कि हम लोग वीक डे में कई बार बहुत बिजी होते हैं और नहीं टाइम निकाल पाते डॉक्टर की विजिट का. सो सैटरडे एंड संडे आपके लिए खुले हैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. और अगर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में नहीं आता या फिर आपके पास इंश्योरेंस प्लान नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है. दे आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग पैशन हेल्थ डायरेक्ट. ये $85 अ मंथ की मेंबरशिप आप ले सकते हैं. दिस इंक्लूड्स प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ इंक्लूडेड है. कोई आपका सवाल है या आपने अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कराना है तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 214-666-6259. वंस अगेन द नंबर इज 214-666-6259. या फिर passionhealthphysicians.com इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन. एक बात का आपको याद रखना है कि दिस प्रोग्राम, दिस पैशन हेल्थ डायरेक्ट प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई. सो चेक देम आउट. वंस अगेन दैट इज passionhealthphysicians.com. 2013 के एंड से लेके हमने आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट डाली हुई है रणबीर कपूर पे. और 2013 के एंड से जो बेशरम मूवी से उनका जो एक थोड़ा सा वो आप कह लीजिए थोड़ा सा डाउन फेज शुरू हुआ, फिर वो रॉय एंड बॉम्बे वेलवेट एंड तमाशा, फिर आई ए दिले मुश्किल. ए दिले मुश्किल ने थोड़ा सा उनको आप कह लीजिए बेटर किया. हम सब जानते हैं ए दिले मुश्किल में उन्होंने आयान का रोल प्ले किया था, मैन हु लव्स डीपली बट ही डजंट नेसेसरली गेट द लव दैट ही वॉन्ट्स. और फिल्म में रणबीर कपूर ने फाइनली एक बहुत मेजर दो तीन सालों के बाद कमर्शियली सक्सेसफुल फेज में वापस एंट्री ली विद द वंडरफुल सॉन्ग्स दैट दिस मूवी ऑफर्ड टू अस. एक गाना आपके लिए प्ले कर रही हूं, दिस इज चन्ना मेरे. और फिर आके बताऊंगी आपको वो कमबैक मूवी जिसके बाद एक बार फिर रणबीर कपूर ने साबित कर दिया कि वो हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट दे हैव.

और फिर 2018 में आई जी राजकुमार हिरानी की संजू, संजय दत्त की लाइफ पे बनी इस फिल्म ने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया रणबीर कपूर को. ही प्लेड संजय दत्त ऑफ कोर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस इट वाज. रणबीर कपूर ने जीता फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 2019 फॉर संजू. और आप लोगों से जब मैं पूछ रही थी कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो बाद में कई सारे मुझे ऑफ एयर भी कॉल्स आए और बहुत सारे लोगों ने संजू का तस्करा किया कि संजू उनकी रणबीर कपूर की उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होने लगी. तो इमेजिन कीजिए अब रणबीर कपूर ने प्ले किया किसी और कैरेक्टर को, यानी कि किसी और हीरो को, संजय दत्त को, और क्या खूबसूरत प्ले किया. जब मैंने पहली बार स्क्रीन पे, आई रिमेम्बर आई वाज वाचिंग दिस मूवी इन द थिएटर्स, तो जब पहली बार रणबीर कपूर की एंट्री हुई, तो मुझे वाकई ऐसे लगा जैसे वो यंग संजय दत्त हमारे सामने आके खड़े हो गए. क्या गेटअप था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी रणबीर कपूर की, किस तरह से उन्होंने रोल पकड़ा. वो कहते हैं ना सही पकड़े हैं, तो सही पकड़ा था रणबीर कपूर ने संजय दत्त की. सारे के सारे मैनरिज्म हो, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हो, वॉइस हो, डिफरेंट स्टेजेस को उनकी लाइफ के रिक्रिएट करना, फ्रॉम दैट यंग बॉय ऑफ रॉकी गोइंग ऑन टू एस्टैब्लिश्ड एक्टर इन खलनायक, टू द विलन, टू द हीरो, टू सो मेनी फेजेस दैट संजय दत्त हैज सीन इन हिज लाइफ, वॉज ब्यूटिफुली कैप्चर्ड बाय रणबीर कपूर.

और मैदान मैदान से मुझे याद आया कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप ड्रीम कर रहे हैं अपना घर बनाने का इंडिया में, या फिर यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, तो फिर बिल्कुल मिस मत कीजिए गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है आपके लिए, प्रेजेंटेड बाय माई स्क्वेयर फीट, द बिगेस्ट इंडियन प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को. दिस इज योर चांस टू मीट द लीडिंग डेवलपर्स फ्रॉम बेंगलुरु एंड हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड दिल्ली, और एक्सप्लोर कीजिए 200 से ज्यादा एक्साइटिंग प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स जो कि इस वक्त इंडिया में चल रहे हैं. एवरीथिंग अंडर वन रूफ व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम ऑफकोर्स, या फिर आप सेकेंड होम लेना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडिया में लेना चाहते हैं, तो फिर आप गृह प्रवेश को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है आपके लिए अक्टूबर 10th एंड 11th, यानी कि इस वीकेंड 10th एंड 11th, फ्रॉम 10 AM इन द मॉर्निंग टिल 8 PM इन द इवनिंग, हैपनिंग एट हयात रीजेंसी फ्रिस्को. तो जरूर इसका हिस्सा बनिए, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पार्किंग आपके लिए एब्सोल्युटली

10 a.m. in the morning till 8 p.m. in the evening, happening at Hyatt Regency Frisco. तो जरूर इसका हिस्सा बनिए और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पार्किंग आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द पार्किंग. सो अपने अपने कैलेंडर्स मार्क कर लीजिए, फ्रेंड्स फैमिलीज और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ आइए और देखिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी अब खरीदनी है. दिस इज गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो ऑन अक्टूबर 10th एंड 11th फ्रॉम 10 a.m. टिल 8 p.m. एट हयात रीजेंसी फ्रिस्को. और संजू जो है वो 2018 में आई. एक बार फिर रणबीर कपूर का वो जो एक मुश्किल टाइम था वो खत्म हुआ. अवार्ड मिले उन्हें इस मूवी के लिए और उसके बाद एक मूवी आई उनकी शमशेरा. दैट वाज रियली रियली बैड. आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट. लेकिन उसके बाद 2022 के आते आते रणवीर सिंह ने अपने आप बार बार रणवीर सिंह क्यों बोल रणवीर कपूर ने अपनी एक अलग पहचान बनाने का फैसला कर लिया हुआ था. ही वॉन्टेड टू बी अ फ्रेंचाइज हीरो. या तो अब जो है फिर मूवी आई ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र 1 तो आ चुकी है 2022 में. अब 2026 हो चुका है. अल्लाह जाने ब्रह्मास्त्र 2 के अब कब आएगी. मैं तो इंतज़ार कर करके थक गई. अब उनकी रामायण पार्ट 1 आ रही है जो कि अगले महीने स्केड्यूल्ड रिलीज उसकी अनाउंस हो गई है. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग. दैट इज़ ऑल्सो अ फ्रेंचाइज मूवी. सो रणबीर कपूर ने अपने ब्रांड को बिल्कुल एक नया शिफ्ट दिया, नया लुक दिया विद ब्रह्मास्त्र.

ब्रह्मास्त्र के बाद एक बार फिर रणबीर कपूर ने रोल किया एक रोम कॉम में, जिसका नाम था जी तू झूठी मैं मक्कार। इस गाने के साथ हम तू झूठी मैं मक्कार के बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट, बट आई एम है विद यू टिल 5 PM। स्टे ट्यून्ड।

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
10: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
11: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
9: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
11: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
1: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
12: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया।
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया।
12: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
14: Visit www.senadainc.com today.
15: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
15: ये क्या होता है?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
17: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
18: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
17: नहीं।
18: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
17: नहीं।
18: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
17: वो भी नहीं।
18: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
19: Customers Hindi में मिलते हैं, Telugu में भी, Punjabi में भी और Tamil में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
1: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net। फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच।
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio, Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran May, Bollywood Spotlight, Ranbir Kapoor. But right now, Spotlight yahan se thodi move karte hain aur aapko connect karte hain hamare Ura Debt Relief segment ke saath. Hamare saath maujood hain Aman ji from Ura Debt Relief, jo hame batayenge ki how can Ura help us make the right financial choices. Let's welcome him on the airwaves of Fun Asia. Good afternoon, Aman ji. How are you doing?
1: गुड आफ्टरनून फाइनेंशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. देखिए हर महीने दर महीने मैं आपको याद कराता हूँ, जो हमारे नए लिसनर्स इस बात को सुन रहे हैं तो उनको बता दें, महीना जब शुरू होता है तो क्रेडिट कार्ड वाले आपको चिट्ठियां भेजते हैं कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट दे दें, लेकिन मिनिमम पेमेंट देने से आपका क्रेडिट कार्ड उतरता नहीं, सिर्फ टाइम पास होता है. क्रेडिट कार्ड की अगर आप स्टेटमेंट भी पढ़े, नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सीधा आता है तो हम लोग शेड्यूल में डाल देते हैं क्योंकि जो पेमेंट स्केड्यूल है वही चली जाती है. कई लोगों की तो ऑटो पेमेंट पे वो भी नहीं पड़ते. तो अगर आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखें तो आप क्लियरली आंखें खुलने वाली बात होती है कि वो आपका क्रेडिट कार्ड का कर्जा 40 to 45 years लगेंगे अगर आप मिनिमम पेमेंट पे रहते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाए, ना सिर्फ उतर जाए बल्कि माफ भी हो जाए, देना ही ना पड़े, तो बेस्ट इज उरा. उरा को कॉल कीजिए, आपके सारे क्रेडिट कार्ड, स्टोर के, पर्सनल, बिजनेस, इन सारे कार्ड्स की एक किस्त बन जाएगी और उसमें से आधा कर्जा माफ हो जाएगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड का डेट माफ करवाया जा सकता है आधे से ज्यादा, बल्कि आपके पर्सनल लोन भी आधे से ज्यादा माफ हो सकते हैं. ना सिर्फ पर्सनल लोन बल्कि आपकी गाड़ी जो रिपोजेस हो चुकी है, जो आपके पास है वो तो आप इंजॉय कीजिए, ड्राइव सेफ, लेकिन जो रिपोजेस हो चुकी है उसको, या फिर गाड़ी जो टोटल हो गई है, जो इंश्योरेंस ने थोड़ा बहुत क्लेम दिया, जो बाकी बचा वो आपको देना है, उसको माफ करवाना है, आधा माफ करवाना है, जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात कर सकते हैं. कॉल मी डायरेक्टली 9-1-6-7-7-6-3-5-5-5, 9-1-6-7-7-6-3-5-5, 9-1-6-7-7-6-3-5-5, और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. उरा स्पेल एज ORAA.org. लेकिन अगर नंबर नहीं भी लिख पाए हो तो नो वरीज, ड्राइव करते जाइए, ड्राइव सेफ. फन एशिया को कभी भी कॉल कीजिए, हमारा नंबर ले सकते हैं और गाने की फरमाइश और अमन का नंबर, लेकिन मिनिमम पेमेंट से पहले कॉल करना मत भूलिएगा.
0: That was very informative. Thank you so much, Amanji. We will talk to you next time.
1: Thank you.
0: Have a good one.

आज की हमने बॉलीवुड स्पॉटलाइट ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण डाली रणबीर कपूर पे, और जो भी लेटेस्ट मूवी उनकी एनिमल आई, बिल्कुल डिफरेंट रोमांटिक हीरो भी थे, कुछ कंफ्यूज बॉय हमने उनको देखा, रॉक स्टार देखी, बर्फी देखी, और फिर सडनली रणबीर कपूर बन गए रणविजय, मतलब डार्क, अग्रेसिव, वायलेंट, एब्सोल्युटली अनअपोलोजेटिक, और एनिमल बनी एक बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस। रणबीर कपूर ने एक बार फिर जीता 2024 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। ये थी इनकी फिल्मी जर्नी। अब रामायण आने वाली है, सो एवरीबॉडी इज ईगली लुकिंग फॉरवर्ड टू रामायण एंड सी व्हाट वी हैव टू सी इन द मूवी एंड व्हाट हाउ रणबीर कपूर हैज पोर्ट्रेट दिस लेजेंडरी रोल जो वो करेंगे। तो ये तो हुई है बात, अब हम इसके साथ रैप कर रहे हैं रणबीर कपूर का सेगमेंट ऑफ बॉलीवुड स्पॉटलाइट। अगले ट्यूजडे को एक नए सितारे के साथ बॉलीवुड स्पॉटलाइट दोबारा से हाजिर होंगे। फिलहाल इट इज टाइम टू गिव यू द वेदर अपडेट। आज है ट्यूजडे अक्टूबर द 6th, 4:45 PM इन द स्टूडियो, और सिटी ऑफ बिकिनी में इस वक्त है 86 degrees, इट फील्स लाइक 84 राइट नाउ। दिन रहा सनी, हाईज इन द मिड 80s, जबकि शाम रहेगी क्लियर विद लोज इन द अपर 50s। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल इवनिंग आउटसाइड टुडे, सो लकीली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मौसम हमारा थोड़ा सा वाकई समर वाला, वो फॉल वाला मौसम आ गया है। 8.5 इज पॉलन काउंट विच इज मीडियम हाई, सो प्लीज दी रेमेडीज ले लीजिए, रैगवीड एंड एल्म इज व्हाट इज बॉदरिंग। यूवी इंडेक्स 7 विच इज मीडियम हाई अगेन। आज का सनराइज हुआ 7:24 सुबह 7:24 AM, जबकि आज का सनसेट होगा 7:04 PM।

और इसी के साथ इट इज टाइम टू गिव यू द करेंसी अपडेट. यूएस डॉलर कहां स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. यूरो आज ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू xrates.com 0.88 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज स्टैंडिंग एट 0.75. इंडियन रुपी 96.40 पे ट्रेड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन यूएस डॉलर. कैनेडियन डॉलर इज 1.42 विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर. और इसी के साथ पाकिस्तानी रुपी 276.97 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर. नेपाली रुपी 154.32 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि बांग्लादेशी टका 122.80 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर वन यूएस डॉलर.

और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट का वक्त आ चला है जी. अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग इस वक्त एक आउंस सोने की कीमत है $4,164.04, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत $133.88. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.09 का इजाफा हुआ, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $33.84 का इजाफा देखने को मिला. That's pretty much all that I have for you where our currency or finance matters. और इसी के साथ हम जल्दी से आपको ट्रैफिक की अपडेट देते हैं. एक इंसिडेंट मुझे नजर आ रहा है, which is always a good news, the lesser the better. एक collision जो कि actually not a collision, it is a disabled vehicle. IH-30 पे towards First Avenue westbound, जिसकी वजह से one lane is blocked out of 9. So the severity of this incident is minor. बहुत ज़्यादा कोई major incident नहीं है, but आप जानते हैं कि रश आवर में एक लेन भी ब्लॉक हो जाए तो बहुत ज्यादा बैकअप हो जाता है. तो यू माइट फाइंड सम बैकअप एंड ट्रैफिक हियर, बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड राइट नाउ ऑन द रोड्स ऑफ डैलस. और इसके साथ इट इज टाइम नाउ टू से माय बायस टू यू. थैंक यू सो मच आज की दोपहर मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए. मैं आपसे मिलूंगी कल एक बार फिर राइट हियर सेम प्लेस सेम टाइम 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पे 2:30 पीएम टिल 5 पीएम. कल है वेंसडे. वेंसडेज इज ऑलवेज जैम पैक्ड. आई विल ब्रिंग यू रोमांटिक मेलोडीज. विल गो ऑन टू पॉप फ्रीक्वेंसीज एंड पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक. द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द टीआरपी चार्ट्स जो आपकी और मेरी लिस्ट में होने चाहिए. एंड ट्रॉफी ट्रैक्स बहुत कुछ ऑन वेंसडेज स्पेशली ऑन आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. स्टे ट्यून्ड. हैव अ लवली लवली रेस्ट ऑफ योर इवनिंग एंड ड्राइव सेफ.

You know, caring is a gift that no one can buy. It's made up of love that roots in our hearts and creates memories, not just for a while, but for a lifetime. So make sure you care for somebody. And if you do, jatao bhi na yaar. A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio. Dobara se aapka suswagatam right here on 104.9 FM with your evening drive time show, jiska naam hai Jeet Bindaas Show. Jo ki leke aata hu main aapka mezban Banda Bindaas Mar Bindaas. Monday to Thursday 5 to 7 PM I give you company. Kuch baatein aapki, kuch meri, aur of course aapko pata hai ki studio pe hame sab kuch celebrate karna bada acha lagta hai. Especially if you, the people of DFW, are celebrating something, birthday, anniversary, या मेरी तरह बस जिंदगी को लेकर खुश हो यार, तो स्टूडियो की लाइन पे कॉल करके जरूर बताइएगा. Would love to be a part of your joy. The number to do so is 972-235-5555. Tuesday की शाम है, अक्टूबर की 6 तारीख हो चुकी है, and Tuesday, यानी कि मंगलवार, और मंगलवार की बात आपको पता ही होगी, कितनी बार बताई है, नहीं पता तो फिर बता देता हूँ. आज के दिन बीवी के साथ मन की बात नहीं करनी, क्योंकि मन की गल करने से लड़ाई हो सकती है. मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कहता है भाई, और ये बातें कुछ लिखी हुई हैं, हमने आपके साथ शेयर कर ली. फॉर नाउ टेकिंग यू बैक टू द म्यूजिक, लेट्स गेट इट गोइंग.

देखो ये बात बिल्कुल सही है कि लेडीज जो है ना वो अपने बच्चे से भी ज्यादा अपने पति से प्यार करती हैं और बड़ा उनको पास और अपना अफेक्शन के साथ रखना चाहती हैं। ये मैं नहीं कहता, ये दस्तूर है। और दस्तूर में देख लो आप, कहीं भी आपने देखा होगा कि लेडीज जो हैं वो अपने बच्चों को तो पड़ोसी के घर छोड़ के जा सकती हैं, कहीं जाना था बहन जरा ध्यान रख लियो, पर ऐसा उस तरफ नहीं हो पाता ना। हाँ, नहीं छोड़ के जा सकती भाई, प्यार बहुत है।

0: मुखड़ा देखते रहना नहीं वो तो ठीक है, पर आप गाड़ी में जाते जाते किसी और की तरफ ज्यादा मत देखना लेफ्ट एंड राइट, नहीं तो ऐसा काम हो सकता है, और ऐसा काम हो जाए तो क्या करना है, अटर्नी उमर ख्वाजा को याद रखना है, ही इज आवर ड्राइव टाइम स्पॉन्सर एंड दैट गाय कैन रियली फाइट योर बैटल्स फॉर यू। इंश्योरेंस कंपनी से ऐसा लड़ते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हाथ जोड़ती है, बोलती है बड़े भैया जो क्लेम है ले जाओ, इसके लिए सिर्फ एक नाम याद रखिए अटर्नी उमर, एंड ऑन द वेबसाइट यू विल फाइंड हिम एट attorneyomar.com। छोटे से ब्रेक के बाद आया वापस।
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सस के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में, सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए, और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं, तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
2: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
3: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
4: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
3: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
4: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
5: That garba was totally worth it. We had so much fun.
6: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
5: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
7: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
8: अरे यार घर मिल गया।
9: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
10: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
9: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
10: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
11: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
12: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
13: Buying a home comes with a lot of firsts. Your first walkthrough, your first offer, your first, they accepted. But there's one first you definitely don't want. Your first title problem. Before the keys are yours, make sure everything behind them is clear. With First United Texas Title, get the confidence of a smooth title and closing process. So the only surprise at your new home is what the neighbors bring over. First United Texas Title. Close with confidence. Own with peace of mind. Call 972-897-1530 or visit www.firstunitedtexastitle.com.
14: Ready for a new opportunity?

0: ये आप लोग जो परेशान होते रहते हो ना कि पता नहीं यार मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, टेंशन मत लो। रात को ना मेरे परदादा जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि बेटा जितने पाप करने कर ले, ना नरक में जगह ना स्वर्ग में, हम तो खुद दीवार में बैठे। देखो अब चॉइस आपकी है, मैंने तो आपको बताना था कि पल्स आ जाती है, इस करके गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल स्कूल जोन में नहीं करना है।
1: बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा
0: ये। और दादा ने ये भी कहा है, दादा नहीं परदादा ने ये भी कहा है कि उनको बता देना सारे दोस्तों को, अपने सारे लिसनर्स को, कि थोड़े बहुते पाप ना कर लेने चाहिए लाइफ में, नहीं तो कल को गंगा जाने का मौका मिल भी गया तो क्या धोने हैं, कच्चे बनाए। It is 5:25 in the studio clock, 5:25 studio ki ghadi mein main rahunga ji aapke saath all the way till 7 o'clock this evening, and this part of our show is brought to you by the immigration expert jinka naam hai ji Seema Mehta, and she brings you some great solutions for any of your immigration needs, green card filing ho, perms ho, temps ho, H1 ho, even your EB5 visa option is available through them. Aapke sawalon ke jawab aapko milenge by going to the website seemamehtalawfirm.com, that's seemamehtalawfirm.com. Or you can send your questions, सवाल हो सकते हैं आपके, और हम तो देसी हैं भैया, हमें अगर फ्री के जवाब मिल जाए उससे बढ़िया क्या है, नहीं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अपने सवालों की एक बनाएंगे पोटली और उनको डाल देंगे जी सीमा मेहता जी के चाय के प्याले में, info@seemamehtalawfirm.com, that's info@seemamehtalawfirm.com. देखो दिल तो गुस्ताख है मेरा, तो ये लो आप सबके लिए है।

शाहिद कपूर साहब विद सुहा अली खान. दिस वॉज फ्रॉम द मूवी दिल मांगे मोर. और आपको पता है कि मोर ना हमारे पंजाब साइड में बहुत होते हैं. कुछ जानवर वाले मोर होते हैं, कुछ इंसानों वाले मोर दिखते हैं सुबह सुबह खेतों के पास ना. फिर जब वो मोर दिखते हैं हमें तो हम कहते हैं सांप आ रहा सांप, फिर वो मोर भागता है. कोई बात नहीं, ये बातें आपको जिस जिसको समझ आएगी उस उसको समझ आएगी. ये बताना चाहता हूँ जी आपको कि डालस में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं. वन ऑफ देम दैट इज़ हैपनिंग ऑन नवंबर 1st इज DFW साउथ एशियन फूड फेस्टिवल एंड दिवाली सेलिब्रेशन. ये 6th साल है जी हमारा इस इवेंट को लाते हुए. दिस इज ब्रॉट यू बाई बिंदास सर्विसेज एंड मी. और ये इवेंट आपके लिए संडे नवंबर 1st को रखा गया है एट द कपेल इवेंट वेन्यू जिसका नाम है जी साइप्रस वाटर. बहुत ब्यूटीफुल लेक साइड वेन्यू है, ओपन एयर एम्पी थिएटर है. सो ऑल यू डू इज ब्रिंग योर फैमिली, एंट्री फ्री है, पार्किंग इज एब्सोल्युटली फ्री. और उसमें फूड जर्नी रहती है विच इज एवरी फूड वेंडर रिप्रेजेंट्स अ सिटी और अ स्टेट. तो कुछ गुजरात रिप्रेजेंट करेगा, कोई बॉम्बे, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, कोई राजस्थान, कोई कश्मीर, कोई जयपुर, थिंग्स लाइक दैट. एंड एवरीबडी ब्रिंग्स यूनिक फूड जो उसी जगह का होता है. तो यू विल गेट टू डू अ जर्नी ऑफ फूड. Along with that, you have a shopping bazaar for all your females. बहुत सारे shopping की दुकानें. And for the kids, we have bounce houses and a lot more entertainment. 5 बजे के बाद शाम को सबको free फुलझड़ियाँ बांटी जाती हैं. और this year, we are bringing 20-foot replicas of goddess Lakshmi, goddess Saraswati and Ganpati Bappa with some LED fixtures in that. So this is going to be something very different. Agar aapka business hai, agar aap apne business ko badhana chahte hain through that event, give me a call 972-302-7012. I'm looking for food vendors and for bazaar exhibit. Chahe aapka jewelry clothing ka business hai ya any other business for that matter that you want to promote, that will be the place. Number 972-302-7012. Is gaane ke baad aake kuch aur gaano ka mauka hai ji hamare paas, because we try to play something new and something crispy for you. To abhi mere ko lagta hai ki it's time for some Badshah, you know, kyun na ho, kyunki I think it's your boy Badshah. Isne ek jagah to bana li hai bhai apne liye. And this is the new track jo chal raha hai ji, bahut banter.

रहा जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: मर्द बेचारा शरीफ इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसको सच बोलने का शौक है। पत्नी ने पूछा, जानू तुम्हें मुझ में क्या क्या अच्छा लगता है? पति कहता है, जी देखो मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज़ अच्छी लगती है डार्लिंग। जैसे कि, कहती बताओ कौन सी चीज़ें जानू? पति कहता है, जैसे तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, तुम्हारी मौसी की लड़की शालू, तुम्हारी मम्मी की लड़की मामी की लड़की शीतल, तुम्हारी बुआ की लड़की नेहा, तुम्हारे पड़ोस की बेटी ममता, बेटी पड़ोसन की बेटी ममता, तुम्हारी सहेली पिंकी। बताया ये जा रहा है जनाब के बंदा फरार है, पिछले 1.5 साल से मिल नहीं रहा है।
1: किस्मत में गुलाम लिखे हुए रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

0: Jizz Bar.
1: Shaky Shaky on the request of Arman, Aryan. Aryan, I hope you enjoyed that track. I'm going to take a short commercial break here. Break your spar. Aa raha hoon aapke paas with a giveaway that's coming up. And this one is from the new sensation in town, jiska naam hai ji Barista. Barista House. Denton se aa chuke hain Frisco. And they are also having Prism Bar and Grill. Batata hoon kya masaledar cheeze yahan banti hain right after this commercial break. Don't go anywhere. This is Funasia.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
7: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
8: डील कहाँ?
7: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
3: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
9: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
10: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
11: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
12: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट, वी हैड सो मच फन.
15: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग, बट इट्स सो लेट. Where can we eat now?
14: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
10: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th, October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
16: यार फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मेरी वाइफ ने शॉपिंग लिस्ट भी दे दी है.
17: कितनी लंबी लिस्ट है?
16: बस 2 पेजेस. इंडियन ड्रेसेस, मिठाई, नमकीन और हाँ, एक पूजा मंदिर भी.
17: अरे तो सब कुछ इंडिया से ही मंगवा लो, SFL Worldwide है ना. इंडिया में आपके डोर स्टेप से सामान पिकअप करके यहाँ सीधा आपके घर डिलीवर करते हैं. पूजा मंदिर हो, झूला हो या फर्नीचर, सामान छोटा हो या बड़ा, ओशन फ्रेट के थ्रू सब शिप हो सकता है.
18: दिस फेस्टिव सीजन इंडिया को अपने और करीब लाएं विद SFL Worldwide. शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द USA एंड वर्ल्ड वाइड. विजिट SFLWorldwide.com.
19: हेलो,
0: मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का स्टेटस क्या है?
8: सर बढ़िया है, 50,000 इंप्रेशंस, 5,000 व्यूज और हंड्रेड्स ऑफ क्लिक्स।
0: ओके, लेकिन कस्टमर्स कितने आए?
8: वो पता नहीं।
19: एडवर्टाइजिंग का असली रिजल्ट क्लिक्स नहीं, कस्टमर्स हैं। Introducing Smart Reach AI, powered by real foot traffic attribution. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits.
0: Ab hui na smart marketing.
19: Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers.
20: Smart Reach AI, a Pan Asia network product.

0: City slum slum brup, run and tell your mummy. This is none other than Raja Kumari and Divine. Divine is the Bombay ka hustler man. Kahan pahunch gaya bhai? Bombay ki galiyon se uthke ek mamooli sa aadmi ek bada sa parcham lehra chuke hain, and that is Divine. He's done so many tracks that are so famous and popular in India, and I have all the respect for everybody that hustles, man. SFL Worldwide is the place that you need to know this festive season. Chahe desi outfits ho, mithaiyan ho, namkeen ho. Mere ko na bahut miss, jo zyada miss karta hu na main, wo hota hai ji apne jo desi style ke dadi wale achar aur, you know, wo jo cheeze hain. I think that shayad wo milavati masalon ka chakkar hai. Hame yahan purity mein banate hain hum, to wo swaad nahi aata. To shayad hame Hindustan ki wo milavat ka pasand hai flavor, kyunki wahan aap dhabe pe bhi khalo yaar, uska swaad yahan 5-star tak nahi de payega. But nonetheless, agar aap bhi apne ghar ki aisi goods miss kar rahe hain, then get with SFL Worldwide. Wo aapke ghar jayenge, jahan se bhi aapne pick up karwana hai, chahe ghar ho, chahe business ho, they'll pick it up from that door and bring it to your door. Chahe ek choti si pin ho, chahe ek letter ho, chahe ek pura ghar ka saman ho, including your cars and even larger items, jaise ki aap puja ke mandir chahte hain, jhula chahte hain, furniture chahte hain, everything can be shipped from them. And if you're a business owner, aapke liye bhi bahut solutions leke aate hain. They have a whole line of freight liners across the United States jo aapko transport via trucking de sakte hain. They can give you air cargo, they can give you of course the ocean freight as well. So these are the people that can bring you solutions of anything shipping, and that's why the name is SFL Worldwide. Now what is SFL? Ship for less, ship for less worldwide. Re baba deva re deva, ye packet utha lena to packet uske deva ki zarurat nahi hai. SFL ko call kijiye 1-800-691-2335. That's 1-800-691-2335. Ab jab maine kaha tha aapko break pe jaane se pehle ke bhai, I have to give you a giveaway, and that is coming from this place jiska naam hai Barista House. The Royal Feast is now back in Frisco from Denton. Denton mein to hai hi, ab aapke liye Frisco mein bhi aa chuke hain by Prism Bar and Grill. Aapko yahan milegi ji zabardast Hyderabad biryani, North Indian favorites, delicious desserts aur bahut kuch. Full service bar aapki friends, aapke family ke liye ek perfect hangout spot. And abhi you can get $20 gift card from them, that is for dine in only. Ji haan, ye Frisco mein located hai. Dine in ke liye aapko $20 milenge. Wahan ja ke ye na kehna, can I get it to go please? Nahi sir ya madam, ye sirf dine in ke liye hai. $20 hai wo de rahe hain. Itna acha nahi hai ki aapko $20 de rahe hain yaar. Mujhe to matlab $20 de, main to Lahore chala jaun. बस टिकट के पैसे भी वो साथ में दे दें. और राइट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपने देखा है हमारी देसी शादियों में ना मेहंदी का रिवाज है. और ये गला साफ करना पड़ रहा है क्योंकि बात जब मैं लेडीज ही करता हूँ तो डरता हूँ. आप लोगों को पता ही है आपसे मैं कितना यू नो महफूज रहता हूँ, थोड़ा दूर दूर, इसीलिए तो रेडियो के पीछे हूँ, क्योंकि पब्लिक में आके अगर स्पीच दे दी आप लोगों ने पकड़ लेना. अच्छा, तो ये मेहंदी का हमारा रिवाज है, ठीक है. अब इसमें जो लेडीज हैं वो चाहे शादी हो और कुछ कुछ फेस्टिवल्स भी ऐसे हैं जिसमें मेहंदी लगाती हैं, बट शादी में अक्सर ऐसा होता है कि जब लेडीज मेहंदी लगवाती हैं अपने हाथ में अपने पति का नाम लिखवाती हैं, ठीक है जी. वो अलग बात है कि पति को बाद में ढूंढना पड़ता है, ये वो, दैट्स अ डिफरेंट गेम. मेरा सवाल ये है, और थोड़ा क्रिएटिव जवाब दीजिएगा प्लीज, वही नहीं कि ये तो कल्चर है हमारा. हाँ मुझे पता है कल्चर है, पर मैं पूछ रहा हूँ कि दिमाग की बत्ती घुमा के सवाल का जवाब दीजिएगा. क्रिएटिव जवाब ढूंढूंगा, जो बढ़िया जवाब देगा, मज़ेदार मसालेदार, उसको मिलेगा जी गिवअवे. तो मेरा सवाल ये है कि ये जो नाम लिखवाती हैं क्यों लिखवाती हैं? Why do ladies get the name of the husband inside the mehndi design? Batao, kyun bhai? Studio ka number 972-235-5555. Dimaag ki batiyan kholo, kholo, kholo, darwaze parde karo kinare, aur phir do jawab ki ladies jab mehndi lagwati hain, apna pati ka naam kahe likhwati hain re? Dekhte hain kaun bhola panchi hamare paas aaya hai. Good evening, Phanesia.
1: Hi, Marvin.
0: Ye to bholi chidiya hai. Hello, chidiya. Hello, lady. Haan ji, kaisi
1: hain? Bilkul, bilkul. बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे हैं?
0: आप मतलब भोली चिड़िया, मैंने ठीक बोला ना?
1: ना ना, भोली चिड़िया होती तो फोन भर के थोड़े जवाब देती.
0: ओहो, मुझे लगा मैं भोला हूँ तो
1: सही वाला है.
0: मुझे लगा कि मैं भोला हूँ तो आसपास में सारे भोले होंगे.
1: ना ना ना, इतने भोले नहीं रहते.
0: वो कहते एक गांव में बंदे गए थे, उन्होंने पूछा यहाँ कोई भोला है? कहता नहीं साहब, यहाँ सब चालू है. अच्छा, आप बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाई डू वुमेन गेट दिस नेम रिटन इन द मेहंदी समवेयर? ये कहीं ना कहीं
1: पहले दिन से बताना होता है कि तुम हमारी मुट्ठी में हो, अब सोच समझ के हिलना.
0: आपने क्या नाम बताया था अपना?
1: समरीन.
0: अमरीन? समरीन.
1: समरीन, समरीन,
0: समरीन. एंड यू आर एबल टू गो टू फ्रिस्को इन केस आप जीत गई तो?
1: यस.
0: पर ये बात तो गलत है क्योंकि बचपन में हमें गाना सुनाया जाता है
1: मुट्ठी से निकलने की कोशिश भी की ना तो फिर
0: मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये तो गलत है ना। हम जैसे शरीफ लड़कों को बचपन में सिखाया जाता है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है देखो, और हमारे साथ क्या होता है मुट्ठी में काबू करके रखने की ख्वाहिश। गुड इवनिंग फरेजिया, हुज दिस?
2: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं जी?
2: सुनील है।
0: सुनील जी कैसे हैं आप?
2: आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया।
0: मैं सर वैसे
2: सर, आपका सवाल बड़ा मजेदार है, उसका मेरा एक दिमाग में का ये जो आंसर आया वो ये कि आज की डेट में लड़कियों के और लड़कों के दोनों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इतने होते हैं कि नाम भूल जाएंगे, तो इसलिए लिखा देती ताकि शादी के समय याद रहे।
0: सुनील भैया ये बड़ा जबरदस्त चौका मारा है यार, और आपने कहा आपके दिमाग में कुछ आया, सवाल ये है मेरा, आपकी शादी हो गई है?
2: जी जी सर, हो गया।
0: मतलब आप बाहर ज्यादा रहते होंगे घर से, तभी तो बचा है, नहीं तो कहाँ बचने की इसमें ख्वाहिश थी बड़े भैया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपके कॉल का। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट कॉलर है। गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस?
3: आशीष।
0: आशीष जी कैसे हैं आप?
3: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। बचपन में गिर गया था, जो फिजिकल चोटें हैं वो तो चलो ठीक हो जाती हैं, कुछ अंदरूनी है सिर वगैरह में लगी हुई वो टाइम से एक्टिवेट होती हैं। आप ये बताइए कि आपकी शादी हो गई?
3: हाँ जी।
0: आपने शादी के बाद वो नाम ढूंढने वाली रस्म की थी?
3: नहीं, ढूंढने वाली रस्म नहीं की थी, पर मेहंदी लगाई थी।
0: मेहंदी लगाई थी, अच्छा। और आपके हिसाब से व्हाई डू लेडीज पुट दिस मेहंदी इन द हैंड एंड देन राइट हस्बैंड्स नेम?
3: मेरे हिसाब से सोचा जाए तो ताकि वो अपने हस्बैंड को अपने हाथ में रख सके, अपने काबू में रख सके,
0: अपने हस्बैंड को अपने हाथ में रख सके, काबू में रख सके, तो फिर रखे ना। हमने क्या कहा है, ऐसे हमें क्यों कुछ कहती रहती हैं। चलो आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया आशीष भाई, आई हैव रिटन इट डाउन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। एक कॉलर और लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। गुड इवनिंग टू यू फनेजिया, हू इज दिस? नहीं, सुब्रमण्यम इधर आएंगे। गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस? सर ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन, जैसे पुरानी फिल्मों में दूसरे।
4: मैं सुब्बू सिंह बोल रहा हूँ।
0: सुब्बू सिंह जी कैसे हो आप?
4: बढ़िया बढ़िया।
0: सुब्बू सिंह जी
4: क्यों लोका करना इस तरह के सवाल पूछी जा रहे हो? वो कहना जी मैं हाथ से अपने नाम लिखवा रहा,
0: हम ये बात करने थोड़ी आए हैं कि कौन क्यों ऐसा कह रहा है, हम तो ये पूछ रहे हैं, मस्ती का सवाल है कि क्यों ऐसा होता है। हमने अपने अपने क्रिएटिव जवाब देने, ज्यादा इमोशन, वो यही तो प्रॉब्लम है हमारी, हम इमोशनों में रह के डूब जाते हैं भैया। गुड इवनिंग फनेसिया।
5: हाय मार्विन सिंह, कैसे आप?
0: मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
5: बहुत बढ़िया, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया, थैंक यू थाने के लिए।
0: देखो पहला काम इजी था ना, कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी है कि लाइनों में लगे रहो, ए दबाओ बी दबाओ।
5: चलो तो मेरा जॉब सुन लो, मेहंदी ला ली है तो फिर दारू पी ली है फिर भूल जाने है ना।
0: तेरा नाम किसी हो कितने रात नु जा करके कह दियो तेरा नाम किसी बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल मैम, आई रियली अप्रिशिएट इट। आई थिंक मेरे हिसाब से जो विनर, क्रिएटिविटी की बात की जाए तो जो बंदा आया था जी सुनील, जिसने बोला आजकल का जमाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो भैया जैसे ठीक लगे, बट नेम इज सुनील, प्लीज गिव मी अ कॉल बैक, यू आर द विनर एंड यू गेट $20 फ्रॉम बरिस्ता राइट हियर इन फ्रिस्को।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahu.
8: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग डायमंड रिंग्स पेंडेंट्स इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर चाहे प्रपोजल हो वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो अब शाइन डबल विद इन बजट लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग
9: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Filmon ka maza action, drama aur romance mein. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
13: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
12: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
13: Papri chaat se malpua rabri tak. Har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
14: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
15: Are sun ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
16: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
17: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram Tulsi. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
18: भूख लगी जोरों की
19: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
20: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
9: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर यू गो टू Page 3 हैव 121 मैकिनी
21: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
22: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
21: Kya matlab?
22: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
21: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
22: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
21: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
0: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

एब्सोल्युटली बिंदास बोलो जी, और आपके बैकयार्ड में जो उगती है उसे घास बोलो जी. दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो ओनली ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम. 6:06 इन द स्टूडियो क्लॉक. यू आर बैक इनटू द 6 o'clock आवर ऑफ योर बिंदास शो. मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM आई गिव यू कंपनी एंड टुडे मार्क्स ट्यूजडे October 6th एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. ये तो जगह जहाँ मजा आता है वहाँ तो हर बंदे को आके मजा आता है. यस यस यस, मुझे यहाँ आके वाकई में मज़ा आता है. इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू गाइस. यू नो, आपके कुछ बातें, आपके कुछ आइडियाज़, आपके कुछ म्यूजिक टेस्ट को जान के और अच्छा लगता है. एंड ऑफ कोर्स आई गेट टू शेयर सम ऑफ माय थॉट्स विद यू. आज जो डे है जी, October 6th है. दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द नेशनल टाको डे. आई लव टाकोज, एंड इफ यू लव टाकोज, इफ यू हैवन मेड अ प्लान फॉर योर डिनर येट, आज टाको की शाम बना लीजिए. दिस इज द फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ अक्टूबर जहाँ पे बनाया जाता है जी नेशनल टाको डे. यहाँ पे एक ऐसी चीज़ को ऑनर करते हैं जो कि वर्सेटाइल होने के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी है. क्रंची भी ऑप्शन मिलता है जी आपको, या फिर अगर आप सॉफ्ट और वार्म तोर्तिया की तरफ जाना चाहते हैं, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. एंड टुडे इज दैट डे व्हेन वी सेलिब्रेट दिस लवली मील आइटम दैट वी ऑल रिलिश कॉल्ड अ टाको. आई एम गोना टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर ऑन फन एशिया. उसके बाद बातें करेंगे कंटिन्यू. बट आई वांट टू लेट यू नो दैट दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय योर वेरी ओन SFL Worldwide. Remember them for their shipping that they do across the globe. SFLWorldwide.com is the website for you for more information. Somebody said we live only once. Nahi bade bhaiya, that is wrong. We only die once. We live every day.

आजकल दुनिया का सबसे बड़ा गम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है यार, कि सब लोगों को ना बस अपनी पड़ी है, किसी को ये नहीं फर्क पड़ता कि अगला किस हालात से गुजर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही इज और शी इज गोइंग थ्रू, यू नो। अब एक ऊंट को देख लो आप, ऊंट अगर कॉफ़ी पिए तो जब तक वो कॉफ़ी गले से उतरती उतरती उसके पेट में पहुंचे, पता है वो कॉफ़ी ठंडी हो जाती है। आपने कभी इस बारे में सोचा? नहीं, आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है।

0: अब देख लो कि एक आदमी जो है ना, आदमी वो बिना शादी किए चाचा बन सकता है, पर लड़की बिना शादी किए कभी चाची नहीं बन सकती यार। घोर कलयुग है, घोर कलयुग में बता रहा हूँ, इस दुनिया में बहुत झोलमोल है। ये देखो ऊपर से एक और झोलमोल देखो, भगवान ने बंदों को ये प्रॉमिस किया कि तुम्हें संस्कारी, तुम्हारी बात सुनने वाली सुशील लड़कियां दुनिया के कोने कोने में मिलेंगी, और फिर दुनिया गोल बना दी दोस्त। उसमें से एक है डॉक्टर शरल चमाथिल, बोर्ड सर्टिफाइड फैमिली मेडिसिन फिजिशियन फ्रॉम पैशन हेल्थ, और वो अवेलेबल है अब आपके लिए सैटरडेज को भी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट सैटरडे वेयर यू कैन गो सी अ डॉक्टर, आप अगर मंडे टू फ्राइडे यू आर टू कॉट अप, then this is the place, 9 a.m. to 1 p.m. you'll get the doctor to see you. You don't have to miss work for a doctor's visit, whether it's a checkup, preventive care ho ya weight management ho, any care that you need you can schedule that with them. 230 O'Connor Ridge Boulevard in Irving, Texas. Also jo Irving aur Frisco ki location hai, ab Saturdays aur Sundays ko dono din open bhi rahegi, so make sure you check out Passion Health Primary Care.
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
2: ऐसी जगह।
3: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए।
4: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे, चलिए ना।
3: अरे

याद रखिएगा द नेम टेक्सास स्टार रिहैब इफ यू एवर गो थ्रू एनी नेक पेन, आपके जॉइंट्स में पेन हो, आपको लगता है आपके घोड़ों की ग्रीस खत्म हो रही है जी, अक्सर ऐसा बोला जाता है, या अगर आपको लगे कि आपकी पीठ में आउच मूव नहीं काम कर रही है, मूव पता ना मूव की ऐड आती थी, खैर छोड़ो, आउच की अगर आपको सिम्टम है, आप उठते बैठते करते रहते हो कि मेरी पीठ बड़ी स्टिफ है, लेफ्ट राइट स्ट्रेचिंग करते हो और फिर जाके वहां से बेटा दो पेन किलर दे दियो, ऐसा नहीं करना है. इवन फॉर द यंगस्टर्स एंड फॉर द पीपल हु आर एल्डर, डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन पेन किलर्स. जब आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, एंड दैट ऑप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्सास स्टार रिहैब. द फैसिलिटी टेक्स केयर ऑफ एनी एज पीपल एंड दे मेक श्योर कि वो आपको नेचुरल एक्सरसाइजेज एंड नेचुरल यू नो डाइट प्लान्स के साथ क्योर करें विदाउट गिविंग यू द एलोपैथिक मेडिकेशन. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेट रिलीफ फ्रॉम देम, दे एक्सेप्ट ऑल ऑफ द इंश्योरेंसेज. दो लोकेशन हैं आपके लिए, वन इज इन अर्विंग राइट ऑन बेल लाइन एंड 635, द अदर वन इज इन द हार्ट ऑफ फ्रिस्को. पेल्विक थेरेपी से लेके बहुत सारी फैसिलिटीज आर देयर व्हेन इट कम्स टू द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड. एनीथिंग टू डू विद योर जॉइंट पेन्स, एनीथिंग टू डू विद योर योर हार्मोन डिसबैलेंसमेंट, वो भी सब कुछ आपके लिए सेट करते हैं. दिस इज टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर, विच इज ऑल्सो द गाय हु रन्स दिस इज अ प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट. सो यू नो दैट यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू somebody who is talking about giving you exercise, you know, different tarike of exercises. Agar wo to dete hain, but uske saath saath he plans your nutrition, he tells you the right key ingredients that should be in your diet, which will help you get out of this. Kahan jana hai? Just go to the website, you'll get all the information. It is called TexasStarRehab.com. That's TexasStarRehab.com. Ek baat yaad rakhiyega, zindagi mein na jab tak ho khate peete raho. और भर के खाओ, जितना दिल करता है उतना खाओ. बाद में तो केवल भोग लगना है, वो भी हमारी फोटो के सामने. इससे पहले लोग आपके सामने बैठ के खाएं, आप तो खा लो. One of my favorite songs, this one's for you all.

0: मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहाँ बार बार बार बार बार बार झूठ बोलना पड़े।
1: अरे सुन रहे हो, इनके तो बाप दादा की बहुत जायदादें पड़ी हैं, सोने की खाने पड़ी हैं, ये क्यों करेंगे नौकरी? नई धूप आज से बोलोगे ही नहीं।
2: अच्छा चुप रहकर और भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा।
1: हाँ मुझे तो पता है कि तुम पागल नहीं हो, पर दुनिया को जाकर कैसे बताओगे।

Taken from the movie Aankhon Dekhi, this is with Sanjay Mishra, Rajat Kapoor, and the reason to play this is because the actor Sanjay Mishra, who's in this track and the movie, is celebrating his birthday today, 6 October 1963 ko inka janam hua, 1963. He's from Narayanpur, Darbhanga, Bihar mein padta hai ji, and aaj inki umar 63 ki ho chuki hai. Wonderful actor, Hindi cinema ko bahut sara kaam diya, do baar jeet chuke hain Filmfare Critic Awards for Best Actor. Performance thi film Aankhon Dekhi 2015, jiska ye gaana aapne dekha. If you haven't seen the movie, go check it out. Vadh, jo aayi thi 2022 mein, and Vadh 2 bhi maine dekhi hai. Dono movies are fantastic. Also won the National Award for Best Supporting Actor, jo ki film aayi thi 2024 ki, Bhakshak us film ka naam tha. Alumnus hain of National School of Drama, wahin se inki shuruaat hui, aur inka debut hua 1995 mein film aayi thi, Oh Darling, Yeh Hai India. Can you imagine, it's almost been just 20 years for him, but what a name. Bahut sari achhi filmein, Rajkumar mein nazar aaye 1996, Satya 98, and then an icon karke you by ESPN, Apple Singh ka character kiya during the 1999 Cricket World Cup. Also known for performance in both drama and comedy. Dono genre ko itne acche se sambhalte hain. A very happy birthday to Sanjay Mishra sahab from the team here at Fun Asia and from Banda Bindas. Uske saath saath, this birthday wish is coming to you by Himalayan Bazaar, जो कि आपके लिए ग्रैंड प्रेरी में लेके आए हैं सॉल्यूशंस फॉर योर ग्रोसरी नीड्स. क्योंकि ग्रैंड प्रेरी स्पेशली टुवर्ड्स हाईवे 20 एंड हाईवे 360, यहाँ पे बहुत कोई ग्रोसरी स्टोर था ही नहीं. सो दीज गाइज केम अप विद दैट सॉल्यूशन फॉर यू, जहाँ पे आपको मिलता है जी ऑल ऑफ योर देसी ग्रोसरी के सारे ऑप्शन, ऑफ कोर्स फ्रोजन एंड फ्रेश प्रोड्यूस के साथ. उसके साथ साथ हलाल मीट, एंड दे हैव अ कैफे दैट इज ओपन नाउ सर्विंग ऑथेंटिक नेपलीज खाना, जिसमें आपको मोमो और बहुत सारी चटपटे चीजें मिलेंगी अलॉन्ग विद टी एंड स्नैक्स एंड कॉफी दैट इज सर्व. सो मेक श्योर यू चेक आउट हिमालयन बाजार, ये राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 360 पे. एंड इफ यू लिव इन अ 5 mile रेडियस, यू गेट योर ग्रोसरीज डिलीवर्ड फॉर फ्री till the time you're spending $50. I think that's a great deal. Aaj ke is time mein jab hum sab busy hote hain, aapki groceries agar ghar aa jaye, nothing better than that. All you have to do is Google the name Himalayan Bazaar from your phones, especially if you live in Arlington, Grand Prairie or Mansfield. Just dekhiye ki wo aapse kitni dur hai, and if it's not too far, don't waste your gas and don't go out in the heat. Just give them a call और आपकी ग्रोसरीज घर पे डिलीवर हो जाएंगी. वी आर सेलिब्रेटिंग वन मोर बर्थडे फ्रॉम अ वेरी लेजेंडरी एक्टर. आई एम गोना टॉक अबाउट हिम. लेट मी प्ले दिस ट्रैक फर्स्ट.

Yes. I know that you know that it's Vinod Khanna, jiski main baat kar raha hu. Ji, Vinod Khanna sahab bolunga. Meri itni aukaat nahi, na itni umar hai ki main unko Vinod Khanna bolu. But Vinod Khanna sahab, jinhone bahut sari filmein hamare Indian film industry ko di. 6 October, aaj ke din, 1946 mein inka janam hua. 27th of April, 2017, he passed on to the heavenly abode. Of course, Indian actor, film producer, politician bhi reh chuke hain. Inka jo style aur fashion tha na, wo bada different tha. और इनको एक सेक्सी सन्यासी का जो टाइटल है वो दिया गया था बाय मीडिया एंड ही वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्स इन द इंडियन सिनेमा हिस्ट्री. 2018 में इनको दिया जी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 65 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एट द 65th नेशनल फिल्म अवार्ड. अगर इनके करियर की बात की जाए, डेब्यू हुआ था 1968 में और कुछ सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे. एक एंग्री यंग मैन का रोल किया था, सोशल ड्रामा फिल्म आई थी मेरे अपने, उसके बाद मेरा गांव मेरा देश, देन अचानक एंड देन केम मोर मूवीज दैट बिकेम एपिक मूवीज फ्रॉम हिम, जैसे कि चांदनी 1989, वांटेड, दबंग टू, दिलवाले, दबंग, एंड दिस वर ऑल द वेंचर्स दैट ही वाज फैमिली वाज डूइंग लेटर ऑन इन हिज करियर. बट जो इनकी फिल्में थी उसकी तो क्या ही बात थी. बहुत सारी फिल्में आप लोगों ने देखी हैं, मैंने देखी हैं, एंड आई थिंक इनका स्टाइल और इनका स्वैग और इनका जो तरीका था वो डेफिनेटली सबसे अलग था. वी आर सेलिब्रेटिंग हिम टुडे राइट हियर ऑन फनी रेडियो. दिस इज विनोद खन्ना साहब.

पेशावर में इनका जन्म हुआ था जी, उसके बाद सफर लंबा रहा, बट व्हेन ही गॉट टू द फिल्म इंडस्ट्री, इनका जो करियर का स्टार्डम था वो प्रकाश मेहरा साहब की फिल्म आई थी हाथी की सफारी, व्हिच आल्सो हैड रणधीर कपूर साहब एंड हेमा मालिनी इन दैट. उसके बाद एक सुपरहिट फिल्म बनी जी जिसका नाम था इम्तिहान, एंड पत्थर और पायल, एंड देन प्रेम कहानी, एंड ऑफ कोर्स कैद द नेक्स्ट ईयर. इनका पीक ऑफ द करियर आया 1970s से लेके 70s के बाद रहा, जब इन्होंने प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म की हेरा फेरी, जिसमें अगेन अमिताभ बच्चन, सैरा बानू एंड सुलक्षणा पंडित थे. दैट बिकेम अ ब्लॉकबस्टर, और इसके लिए मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, नॉमिनेशन मिला था. देन डिलीवर टू मोर मेजर सक्सेसेस जो थी शंकर शंभू एंड नहले पे दहला, दैट इज विनोद खन्ना साहब हुम वी आर टॉकिंग अबाउट. जाते जाते एक गाना और चलाना चाहता हूँ, पर उससे पहले आपको बता दूँ अबाउट रिलेटिव मीडिया, विच इज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर अ बेटर सोल्यूशन फॉर योर मनी स्पेंट ऑन मीडिया एंड मार्केटिंग. अगर आप अपने ब्रांड को चाहते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा और अटेंशन मिले और रीच बढ़े और रिजल्ट्स मिले, तो फनेजिया नेटवर्क आपके लिए लेके आया है मीडिया एक्सपर्टीज टू योर सोशल मीडिया विद रिलेटिव मीडिया. स्क्रॉल स्टॉपिंग रील्स बनाते हैं जी, आई कैचिंग ग्राफिक्स हैं, एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपके बिजनेस के लिए करते हैं, ताकि आपको मिले एम्प्लीफिकेशन अक्रॉस फनेजियाज रेडियो, डिजिटल एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म. रिलेटिव मीडिया गिव्स योर बिजनेस अ कंप्लीट कंटेंट सॉल्यूशन, ये सब आपको एक ही जगह पर मिलेगा. इफ यू वुड लाइक टू एडवर्टाइज ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स फनेजिया एंड आवर डिजिटल पार्टनर विच इज डिजिटल ब्रांड विच इज रिलेटिव मीडिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर है 972-302-7012, एंड ऑफ कोर्स टू एडवर्टाइज ऑन द स्टेशन यू कैन ऑल्सो कॉल मी, आई एम सेल्स डायरेक्टर हेयर एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 20 ईयर्स. तो अगर आप मेरे बिजनेस मेरे इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहते हैं, देन यू शुड सर्टनली गिव मी अ कॉल. 972-302-7012 मेरा नंबर है जी, 972-302-7012. लिविंग यू विद अनदर ब्यूटिफुल नंबर from one of Vinod Khanna's movies. And with that, it is good night, bye-bye, adios. Upar wale di zindagi. To kal shaam ko phir se hogi mulaqaat, 5 to 7, right here on Fun Asia. Aur haan, mere baad is Ippy the Hippie.